0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: सुप्रभात, सुबह के 5:60 हुए हैं। ट्यूसडे की सुबह है और अगर आप भी साथ दे रहे हो इतनी सुबह, तो समझ लो कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। मैं हूं निर्मनी और आप सुन रहे हैं राइज एंड शाइन, जहां पर म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता, फील किया जाता है। 70s, 80s और 90s के एवरग्रीन मेलोडीज के साथ है। शुरू करते हैं आज का सफर, तो वॉल्यूम को थोड़ा अपने तरीके से एडजस्ट कीजिए और दिल को थोड़ा रिवाइंड करते हैं साथ में आपके RM2 वीडियो मस्ती पर। गुड मॉर्निंग,
0: राइज एंड शाइन, स्टार्ट फ्रेश, स्टे शार्प, वेक अप विद द वर्ल्ड। वेलकम टू RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वैसे जब यार हो साथ हमारे तो किस बात का दर्द। आरएम टू वीडियो मस्ती यहीं पर है साथ निभाने के लिए। गुड मॉर्निंग टू रेखा जी जो कह रही है लो फिर आ गई है नई सुबह, जागृत ही है जिंदगी, गूंज उठा है संगीत। आशा है कि आप इस सुबह को चिल तरीके से बता रहे हैं। जयशन जी भी साथ दे रहे हैं अलोंग साथ में अब्दुल जी, सहारा बानो जी एंड सचिन जी का मैसेज आया है, वो डेडिकेट कर रहे हैं नेक्स्ट गाना काजल, श्रवणी, श्रवण, आहान एंड बिटू फैमिलीज के लिए जो कि पुतहुदो के रहने वाले हैं। सो

0: चलिए नेक्स्ट गाना हो जाए आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह का वक्त ना एक फ्रेश स्टार्ट होता है कल जो हुआ वो हो गया आज का पेज बिल्कुल नया है बिल्कुल साफ है तो ट्यूसडे को बोरिंग मत बनाइए स्माइल कीजिए अपनी चाय या कॉफी को एंजॉय कीजिए ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग और जो भी काम सामने आए ना थोड़ा म्यूजिक के साथ थोड़ा स्वैग के साथ सब निपटाते हैं ताकि दिन आपका प्रोडक्टिव हो विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑन RM2 रेडियो मस्ती
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए भी समय हुआ है राशिफल का यानी कि होरोस्कोप का तो शुरुआत करती हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: आज कॉन्फिडेंस आपका हाईएस्ट पोजीशन पर रहेगा। बस जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना है। लकी कलर आपका है लाल और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: मेहनत रंग लाएगी और काम में अच्छी प्रगति होगी। कलर आपका है सफेद और नंबर है 2।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज नए मौके मिल सकते हैं, सोचिए कम और एक्शन ज्यादा। लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: घर परिवार से खुशी मिलेगी और मन भी शांत रहेगा। लकी कलर आज आपका है सिल्वर और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, चमकते रहिए। लकी कलर आपका है सुनहरा, नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखिए, काम अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा। लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 5।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज फैसले लेने की हिम्मत रखिए, सिचुएशन आपके ही पक्ष में है। लकी कलर है नीला और नंबर है 6।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: मेहनत का रिजल्ट मिलेगा और कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है। लकी कलर आपका है लाल और नंबर है 1।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: काम की जगह पर आपके आइडियाज की तारीफ होगी। शाइन ऑन लकी कलर आपका है पीला और नंबर है 9।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: पराई कैरियर या पैसों से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। लकी कलर आपका है नीला और नंबर है 8।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: नई जिम्मेदारी मिलेगी लेकिन साथ में तरक्की का मौका भी। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 4।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज थोड़ा संभाल कर चलना है, खास कर काम और खर्चों में। लकी कलर आज आपका है पीला और नंबर है आपका 3। राशिफल तो हो गया, अब आप अपनी किस्मत को एक गुड मॉर्निंग स्माइल जरूर दीजिए। याद रखिए कि सितारे डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन दिल दिन और दिल को खूबसूरत बनाना आपके हाथों में ही है।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: ये सब कनेक्टेड हो चुके हो राइज़न शाइन पर. वैसे ट्यूसडे का नाम सुनते ही मंडे की थकान याद आ जाती है ना. लेकिन टेंशन नहीं, आप बस चाय रेडी रखिए, ब्रेकफास्ट का सोचिए और हमें म्यूजिक को संभालने दीजिए. आज का फॉर्मूला सिंपल है, थोड़ी चाय कॉफ़ी, थोड़ा नॉस्टाल्जिया और बहुत सारी अच्छी म्यूजिक

0: आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे है। चलिए सुनते हैं आज का पहला फ्लैश। आपसे आस्था, नमस्कार।
1: नमस्कार, 6 बजे के प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ, जिन्हें हम बेशक विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। मॉरिशस में पानी की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय ये स्तर 87% से ज्यादा था। मोवाकवा सिर्फ 36% और लानिकुलिया महज 6% भरा है। आने वाले महीनों में सामान्य के आसपास बारिश की संभावना, लेकिन मौजूदा कमी पूरा करने के लिए ये शायद काफी नहीं होगी। कोटोगाफे में कई परिवार अब भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। कुछ परिवारों को जमीन का कॉन्ट्रैक्ट मिले करीब 15 साल हो चुके हैं। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA और CBI के अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया। ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मीता की एक टीम आज और कल मॉरिशस में अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। बच्चों की सुरक्षा, उम्र की जांच, क्रियोल मॉरिशिया में कंटेंट मॉडरेशन और आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के मामले के बीच संभावित संबंध का अब मॉरिशस में वैज्ञानिक अध्ययन। WHO और FAO के सहयोग से होने वाले इस अध्ययन में पेस्टिसाइड्स के संपर्क और स्वास्थ्य पर उनके संभावित असर की जांच की जाएगी। और अब बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और शाम तक देश भर में मौसम अच्छा रहेगा और धूप खिली रहेगी। केवल देर शाम को पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है। रात के मौसम की बात करें तो केवल पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और वर्षा की संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 5 बजकर

0: पैंतालीस मिनट पर सूर्यास्त 6:01 पर होगा।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग वंस अगेन. एक आवर हो गया हमारे राइज एंड शाइन जाने को और अभी सफर बाकी है मेरे दोस्त इट्स नामिनी. और चलिए ट्यूसडे की सुबह को और भी खूबसूरत बनाते हैं. आई एम श्योर अभी आप में से कुछ घर से निकल चुके होंगे टू गो टू वर्क. मुकाश यू एंड स्टे सेफ व्हाइल ड्राइविंग. गानों के संग आपके साथ ही होगी नामिनी RM2 वीडियो मस्ती पर ही.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio.

मस्ती करते तो मेरे का मजा करते, मेरा साउथ का मजा करती है। देख आज मैं लुंगे उठा कर तुमको डिस्क नारियल दिखाएगी। अच्छा पागल हो रहा है।

मॉर्निंग में थोड़ी मस्ती तो बनती है, इसलिए आपके लिए चलाया आई एम कृष्ण अय्यर एमए मिथुन चक्रवर्ती का वो जबरदस्त फुल ऑन मस्ती वाला अंदाज मूवी अग्निपथ से। और सोचिए सुबह सुबह अगर कृष्ण अय्यर वाली एनर्जी मिल जाए तो ट्यूसडे बोरिंग कैसे हो सकता है। तो चलिए आई होप कि आपके चेहरे पर मुस्कान तो आई। अब खुद से कहो आई एम रेडी फॉर द डे।

0: 2 रेडियो मस्ती
1: पहली बार मॉरिशस में भजन जैमिंग को दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है एक जबरदस्त और लाइवली म्यूजिक फेस्ट एवरी इवनिंग आज फ्रॉम 7 PM 29th ऑफ अक्टूबर को भजन जैमिंग के पायनियर्स बैकस्टेज सिबलिंग्स 30th ऑफ अक्टूबर को लोकल आर्टिस्ट का शानदार लाइनअप यूफोरिया क्रू हार्मनी ऑन अवनी और अभिनव शंकर आर्या शिवाइब और कोविला द आर्टिस्ट एंड ऑन द 31st ऑफ अक्टूबर को भाविक आर्या और गौरी माधुरी की खास जोड़ी संगीत भक्ति और ऊर्जा से भरी शाम का हिस्सा बनिए टिकट्स अवेलेबल ऑन ticketbox.mu और कॉल ऑन 5508-3602
0: RM2
2: रेडियो मस्ती

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जो लोग अभी उठ रहे हैं गुड मॉर्निंग और जो ऑलरेडी काम में लग गए हैं आपको डबल गुड मॉर्निंग. आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा हो यही विश है हमारी. बिग हेलो टू किशन जी, सरोजा जी, दूतिका जी जो साथ दे रहे हैं. एंड याद रखिए दोस्तों कि सुबह का मूड पूरे दिन की कहानी लिखता है, तो स्माइल रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपना फेवरेट गाना हमारे साथ एंजॉय कीजिए.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio.

नमस्कार, मंगलवार 6 अक्टूबर की सुबह इन समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस में पानी का संकट गहरा रहा है और जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा। हालात पर चर्चा के लिए आज वाटर क्राइसिस कमेटी की अहम बैठक लगेगी। विश्व बैंक ने मॉरिशस के आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत बताई है और कहा कि सुधारों से 2050 तक 37,000 से ज्यादा कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। मॉरिशस में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के बीच संभावित संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, जिसमें WHO और FAO भी सहयोग करेंगे। ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मेटा की टीम आज मॉरिशस में अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी, जिसमें बच्चों की सुरक्षा और आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। फ्लाई दुबई के एक उड़ान में कैप्टन पर कथित हमले की जांच जारी, जबकि मीडिया रिपोर्टों में को पायलट के विमान को तेल अवीव में टकराने की कथित योजना का दावा किया गया है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मॉरिशस की मौजूदा आर्थिक व्यवस्था अब अपनी सीमाओं तक पहुंच रही है। विश्व बैंक ने अपनी नई रिपोर्ट में ये बात कही है। गन्ना, कपड़ा उद्योग और फिर पर्यटन के सहारे देश ने आर्थिक विकास के अलग अलग दौर देखे, लेकिन अब बढ़ती उम्र की आबादी, घटती प्रतिस्पर्धा और सामाजिक खर्च का बढ़ता बोझ नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव जल्द शुरू करने की सिफारिश की है, खासकर ज्यादा आमदनी देने वाली सेवाओं और डिजिटल सेक्टर को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही युवाओं को इन सेक्टरों में रोजगार के लिए कम समय के प्रमाणिक प्रशिक्षण देने की भी सिफारिश की गई है। विश्व बैंक के अनुसार ये बदलाव किए जाएं तो

2050 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 7% की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है और 37,000 से ज़्यादा कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि मॉरिशस में पानी की स्थिति लगातार चिंता बढ़ा रही है। जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय ये स्तर 87% से ज्यादा था। मोवाक्वा सिर्फ

0: पूजा सुकालू का विवरण पेश है।
1: दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर के लिए जलवायु पूर्वानुमान फोरम के अनुसार इस गर्मी में बारिश सामान्य स्तर के आसपास रहने की उम्मीद है। इसमें मॉरिशस भी शामिल है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बारिश की जो कमी हुई है उसे पूरा करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होगी। IOC के क्लाइमेट और हाइड्रोलॉजी इंजीनियर एरिक पुमी कहते हैं,
2: Les zones les plus vulnérables à la sécheresse qu'on voit, il y a la zone à Guéliga, il y a aussi la zone de Mascareigne. On va observer un risque accru de stress hydrique.
1: हिंद महासागर द्विध्रुव जो इस क्षेत्र के मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले में से एक है, न्यूट्रल स्थिति से अब सकारात्मक चरण में प्रवेश कर गया है, जो चक्रवात के बनने के लिए अनुकूल है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है।
2: Pour les cyclones, on voit que la trajectoire est méridionale, donc elle ne va pas beaucoup plus impacter sur les habitations. Pas ça aussi de Maurice, c'est ça, avec les prévisions qu'on voit là.
1: आने वाले समय में पर्याप्त बारिश या तूफान होने की संभावना नहीं है और इसके प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से महसूस होंगे।
2: Le rendement sera très bas sûrement pour cette période-là, parce que on aura en termes de risque accru. On aura un peu de stress hydrique pour des cultures et des baisses de rendement. Et si on ne regarde pas très bien, on pourra atteindre l'insécurité alimentaire.
1: IOC स्थिति पर निगरानी रखने में अधिकारियों को तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार हैं। मॉरिशस ऋतु विज्ञान केंद्र की ओर से आने वाले महीनों के लिए अपना पूर्वानुमान अक्टूबर महीने के अंत में जारी करेगी।
0: कुतुब हफे में कई परिवार आज भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। इनमें कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट मिले करीब 15 साल हो चुके हैं। समस्या का जायजा लेने के लिए भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA और CB के अधिकारियों के साथ इलाके का किया दौरा। अब इन परिवारों तक ज़रूरी सुविधाएँ पहुँचाने के लिए संभावित कदमों पर काम किया जा रहा है। मंत्री को सुनते हैं विवरण आदित्य।
3: C'est qu'ils nous capables tapent la porte du ministère des Finances et demandent l'argent pour qu'ils nous capables faire cimer, coltarer avec drain, pour qu'ils aient la case pas inondée quand il y a un gros moment de pluie.
4: हम वित्त मंत्रालय की सहयोग की मांग कर सकते हैं टारकोल बिठाने और नाली संबंधी परियोजनाओं के लिए, ताकि भारी बारिश के दिनों इन परिवारों के घरों में पानी न भर आए और ताकि उन्हें सुचारू रूप से जल और बिजली आपूर्ति प्राप्त हो सके। जिन अन्य लोगों की स्थिति नियमबद्ध नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि मंत्रालय के अफसरों के सहयोग से उनकी स्थिति कानूनी मापदंडों के अनुरूप स्थायी हो सके। लेकिन इन प्रक्रियाओं का संबंध समंदर तटों से नहीं है। बीचेस पर अभी भी गैर कानूनी ढांचे पाए जाते हैं। इनको लेकर बीच अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। अब भूमि और आवास मंत्रालय की तरफ से भी उन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन हम जटिलता पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें दूसरी जगहों पर बसाने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन गलत तरीके बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
0: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर हैरेसमेंट, फर्जी प्रोफाइल्स और खतरनाक कंटेंट, इन बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा के लिए मेटा की एक टीम आज और कल मॉरिशस में रहेगी। सरकार के साथ बातचीत में बच्चों की सुरक्षा, उम्र की जांच और ख्योल मोरिशिया में कंटेंट मॉडरेशन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ICT मंत्री अविनाश राम तोहल चाहते हैं कि शिकायत मिलने पर आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाया जाए और पुलिस जाँच में भी बेहतर सहयोग मिले। मंत्री को सुनते हैं आदित्य अवतार का विवरण।
5: मेटा c'est une compagnie qui gère Facebook, WhatsApp, Instagram.
4: मेटा कंपनी Facebook, WhatsApp और Instagram का संचालन करती है। वो काफी लंबे समय से दुनिया के कई देशों और मॉरिशस में भी मौजूद है। मेटा को मॉरिशस लाने के लिए राजी करने में हमें काफी परेशानियां हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के समर्थन से हमने बहुत प्रयास किए और हमारी उनसे सकारात्मक बात हो पाई। अब मेटा यहाँ आने के लिए राजी हुई है। हम सोशल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में पेश आने वाली समस्याएं, यूजर्स की सुरक्षा, खासकर बच्चों की, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पेश आने वाले धोखाधड़ी के मामले उनके सामने रखेंगे। मकसद है जनता की बेहतर सुरक्षा के लिए और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा कायम करना। ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कानून में प्रावधान पहले से ही मौजूद है, लेकिन मेटा के स्टैंडर्ड्स हमारे कानूनों के अनुरूप नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कानून का पालन हो, इसलिए इस दिशा में मेधा के साथ बातचीत होगी।

0: जिससे देश में बेहतर तरीके से साइबर अपराधों से निपटा जा सके।
1: क्या पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के मामलों के बीच कोई संबंध है? जी हाँ मॉरिशस में अब इसका वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और एफएओ के सहयोग से एक अध्ययन की तैयारी है ताकि पेस्टिसाइड्स के संपर्क और स्वास्थ्य पर उसके संभावित असर का पता लगाया जा सके। इसी मुद्दे पर अंतर मंत्रालय समिति की पहली बैठक एबेन में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में लगी। कुछ कृषि सामानों में तय सीमा से ज्यादा पेस्टिसाइड मिलने के बाद नियमों की समीक्षा भी हो सकती है। मंत्री अरविंद मुरेल को सुनते हैं।
2: Nous faire appel à nos camarades qui représentent l'Organisation mondiale de la santé et avec FAO pour nous travail de concert gagner ce soutien de concert avec le ministère de la santé pour faire cette étude épidémiologique. Après ça, nous peut la loi le use of pesticides. Le là un expert qui travaille l'eau la loi et ça va un expert là indien qui ban amendement mis amené dans la loi et qui ban réguler choses. Nous avons aussi nous ban planter local et là ban importateur qui importe ban légumes ou bien ban fruits mais tout ça ban test là pour faire et après nous ban analyse quand nous peut faire nous peut avoir ça non seulement nous faire dit ici à Maurice mais nous avons dit dans un laboratoire de renom ailleurs.
1: तेज आवाज करने के लिए गाड़ियों के एग्जॉस्ट में बदलाव करने वालों के खिलाफ अब कानून और सख्त हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर महीने तक पुलिस ने ऐसे मामलों में 289 कॉन्ट्रावेंशंस जारी किए हैं। रोड ट्रैफिक एक्ट में हाल के बदलावों के बाद ज्यादा शोर पैदा करने के लिए साइलेंसर में बदलाव करने पर ₹10,000 का जुर्माना हो सकता है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर अनावश्यक शोर को कम करने के लिए जाँच जारी रहेगी। बात करते हैं अब स्वास्थ्य के बारे में। मॉरिशस में मधुमेह यानी डायबिटीज की रोकथाम और इसके कारण होने वाली जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नामक गैर सरकारी संगठन का लक्ष्य मॉरिशस की जनता के साथ मिलकर काम करना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। उद्देश्य है वर्ष 2035 तक अनियंत्रित डायबिटीज के मामलों में 5% की कमी लाना। इसके लिए समुदाय आधारित गतिविधियों शोध और सर्वेक्षणों के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को समझने और उसके आधार पर प्रभावी कदम उठाने की योजना है। पेश है पूजा सुकालू की रिपोर्ट।
3: मधुमेह आज दुनिया के सामने एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मॉरिशस में ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ की ओर से समुदाय आधारित एक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मधुमेह की रोकथाम करना, अनियंत्रित मधुमेह को कम करना और इससे होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को रोकना है। संगठन का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को केवल अस्पतालों तक सीमित रखने के बजाय समुदाय को इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए।
4: हम लोग डायबिटीज को जो बीमार है और प्री डायबिटिक जो डायबिटिक के आगे का स्टेज है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। एक ठुला अनुसंधान हो रहा है। हम लोग पार्टिसिपेंट्स को डायबिटिक पार्टिसिपेंट्स को प्री डायबिटिक पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करेंगे विद देयर कंसेंट यू नो इन डिफरेंट एरियाज ऑफ मॉरिशस। वहाँ पर हम रिक्रूट करेंगे, उन लोग को ट्रेन करेंगे हाउ एंड डाइट के बारे में सिखाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में सिखाएंगे, अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बोलेंगे, सिमिलरली स्मोकिंग के इफेक्ट के बारे में बोलेंगे।
3: इसी दिशा में मॉरिशस स्थित लिस्पेरांस त्रिबिशे इलाके में एक सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने घर घर जाकर स्थानीय निवासियों से जानकारी एकत्र की और उनके स्वास्थ्य से संबंधी आंकड़े जुटाए।
5: एक डॉक्टर आ रहा है, एक घंटा ले हमसे बात कर लग जावेद पर ढेर बतलाक हमी के चाहना स्वीप हो के हमी के मिला था अचानक कुछ इच्छा है ना स्वीप हो के बस हमियों के लाश जाता है इतना पर हो गल है सर चाहना हमी के स्वीप करे के जे मैं अच्छा रह सर ना लैका लोग के आगे रह सर ढेर दिन ले जी अब सर
6: मैं बहुत मित्र हूँ मीन पूजा बेटा ला मैं सामो पर प्रेगोशन अपने पूमा जिला बन लेगी सानू मॉस प्लीज सलाद सर सर वे कि जो बेफेला बिया वो अपने से ना सो शासन तो सलाद सानू का लेन
3: ये पहल केवल मॉरिशस तक सीमित नहीं है। नेपाल, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों में भी संगठन की ओर से इसी तरह की सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। इन गतिविधियों के दौरान लोगों से सीधे मुलाकात की गई, उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को समझने का प्रयास किया गया और मधुमेह की रोकथाम

0: एवं स्वस्थ जीवन शैली को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए। घर घर जाकर लोगों से संवाद करना, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करना और लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
1: मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MFDC अपने 40 साल पूरे होने पर स्थानीय सिनेमा और नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें नेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2026 भी शामिल, जो अनुभवी और नए दोनों फिल्म मेकरों के लिए खुला रहेगा। और प्रतियोगिता में 3 श्रेणियाँ रखी गई हैं, पारंपरिक तरीके से बनाई गई फिल्में, AI की मदद से तैयार फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी। इसके अलावा सिनेमा वीक, अलग अलग कार्यशालाएं और देश भर में फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग्स भी आयोजित की जाएंगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें फ्लाई दुबई की एक उड़ान में हुई गंभीर घटना की जांच जारी है। अमेरिका और इजरायली मीडिया की खबरों के मुताबिक दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान के को पायलट ने कथित तौर पर कॉकपिट में कैप्टन पर इमरजेंसी आक्स यानी कॉकपिट में रखी गई जो कुल्हाड़ी से कैप्टन पर हमला किया। जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि को पायलट विमान को तेल अवीव में किसी जगह से टकराना चाहता था। हालांकि इस दावे को अभी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। विमान में 180 से ज्यादा यात्री सवार थे। यात्रियों और क्रू ने को पायलट को काबू में किया, जिसके बाद विमान को सुरक्षित सऊदी अरब में उतारा गया। UAE के अधिकारी अब घटना के कारणों और इसके पीछे के मकसद की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ धमकियों के बाद ब्रिटेन के RAF फ्रैंकफर्ट सैन्य अड्डे से अमेरिकी सैन्य विमान हटा लिए गए हैं। पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है। विमानों को वापस अमेरिका भेज दिया गया है। हालांकि धमकी किस तरह की थी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों को धमकी देने वालों के बारे में जानकारी है। वहीं बरतानी सरकार ने RAF फ्रैंकफर्ट को सुरक्षित बताया है। और अब अंत में चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर रहेगा। आज शाम को और सुबह के दौरान भी देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। केवल देर शाम को पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बरसात हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगी। रात को देश के पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लेटों पर मौसम कुछ खराब हो सकता है। बादल घिरे रहेंगे और कुछ कुछ वर्षा होने की संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 5:47 पर, सूर्यास्त 6:09 पर होगा।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे यूसुफ, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
0: शोक समाचार सुनिए। मार्केट लेन रिवियनवा में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की रेशमा गंगाराम की मृत्यु हो गई हैं। पैदाइश नाम अर्जुन, उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे उनकी माता गंगा भाई अर्जुन के मकान रिवियनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियनवा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 4 PM। विक्टोरिया स्ट्रीट वाल्टोन लॉन्ग माउंटेन में 72 साल के धनंजय रामरतन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें श्याम के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले SS Oran अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम करते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उन्हें के मकान लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेफकियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM। न्यू मोसलमा गुडलैंड्स में 68 साल के अब्दुल सिद्दीक इमामदी इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज सुबह के 10:30 बजे उनकी पत्नी नरीमन इमामदी

ये मकान गुडलैंड से निकाल कर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM. रॉयल रोड मेबर्ग में, रॉयल रोड मेबर्ग में 88 साल के TATSOL के सीराम रामदू की मृत्यु हो गई है. सीराम रामदू की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें सुपाई के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थे आज दिन के एक बजे उन्हीं के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. अली दिस अकासिया बुवालो में 78 साल के 78 के देबी दियाल शाम की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उनके बेटे विक्रम शाम के मकान बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन में बग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. शापेल लेन लिस्काली में 47 साल के 47 के शेराकेश कंगाम की मृत्यु हो गई है. शिराकेश कंगाम की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें विक्रम के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी माता धनवंती कंगाम के मकान शपल ने निस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट नून. दागा लेन 16 मील फोरेसाद में 66 साल के 66 के लालमन की मृत्यु हो गई है. श्री लालमन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें मनोज दागा के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी मीता दागा के मकान फोरेसाद से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. खुद कुस्ताल पॉइंट पिमो में खुद को स्थल माफ कीजिएगा पॉइंट कानूनी में 71 साल के 71 के अनिरुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें रविन के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के मकान पॉइंट कानूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. शोभा लेन लाफ्लोगा में 91 साल की 91 की श्रीमती कुमारी देवनागायन की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम लक्ष्मण. उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे उत्तम रघु के मकान लाफ्लोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. सनाशी गोदेन कॉफिरिंगा पॉइंट साब में 62 साल की 62 की श्रीमती मनी देवी बंधन पैदाइश नाम बंद हुआ की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें उषा के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान पॉइंट साब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 9 AM. विजय लक्ष्मी रोड पुद्रदो हमलेट में 74 साल की 74 के अनिरुद्ध आउतो की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें शाम के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी सत्या भामा आउतो के मकान पुद्रदो हमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कहोमाउतें पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. लॉट नंबर 138 मुसलमान SIT रोजबेल में 68 साल की 68 की विद्वंती रितु की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम कनाए. लोग उन्हें माला के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के 12:30 उनके बेटे अविनाश रितु के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माघजानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM. रेमियोनी लागुलेट में 63 साल के 63 के बाबा जी की मृत्यु हो गई है. श्री बाबा जी की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी मानती बाबा जी के मकान लागुलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 10 AM. शिवाला रोड बाल्मिक लेन तेमिनिस्ट्रियोली में 68 साल की 68 के मदनलाल जीबन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें सुनील के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान तेमिनिस्ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस्ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. रॉयल रोड शमेला फोर्ज पोस्ट फ्लाक में 69 साल की सुमती देवी
सोनाराम सुमति देवी सोनाराम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनीता कुचियो के नाम से अधिक जानते थे। उनके

एंड यस, इसी खूबसूरत गाने के साथ आई मोर लाइफ वुमन एंड आई टू से गुडबाय. आने वाली है नेक्स्ट आपके लिए मनीष माँ, तो यही पर रहना कनेक्टेड. आरएम2 रेडियो मस्ती पर. हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग.

0: मॉर्निंग सुबह के 7 बजे है.
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो. जेम्स
2: RM2 Radio Musty in the mix.

चल उड़िए नहीं, क्या बात है, आजा चल उड़िए नहीं, चल उड़ते हैं, लेट्स फ्लाई हाई विद अवर ड्रीम्स एंड अवर यू नो अवर वी कैन से हमारा ये जो फिनालिटी है हमारे लाइफ में उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू फ्लाई हाई. लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर मॉर्निंग बीट हियर विद आरएम टू रेडियो मस्ती. इट्स ट्यूसडे 6 अक्टूबर, 7:05 होने को है. Have a wonderful start in the morning. Have a wonderful, wonderful time listening to the best of song selection. यहाँ पर हम ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे ऐसे ऐसे गाने जो आपके morning को start करने में मदद करने वाले हैं. Okay जी, have a wonderful start. Here we go. Bandhu 2.0 cocktail 2 movie से लिया गया ये गाना है.

0: सका तुम ही। वैसे आपके दिमाग में कोई है जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, कोई अपना, कोई सखा सखी, एंड यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जरूर। उनका नाम जो आज उनका जन्मदिन है, उनका नाम, उनका पता, उनका फोन नंबर, या फिर नाम और फोन नंबर, बस ये दोनों राइट करके भेज दो ऑन दिस नंबर 5491294 पर, और वो इंसान जीत सकता है अमेजिंग वाउचर। वैसे ये सरप्राइज हम करने वाले 7:20 को। यहाँ पर आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, अपना नाम भी लिखिएगा, अपना फोन नंबर और द पर्सन्स बर्थडे जिनका आज जन्मदिन है। तो मनाइए हमारे साथ स्पेशल हैप्पी बर्थडे विद आरएमटी रेडियो मस्ती। गुड मॉर्निंग, इट्स योर मॉर्निंग बीट विद मनीषमा।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग

0: आगे जो तो बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे मैशअप को, ये ही हमको पसंद भी आ रहा है वैसे। यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस जो आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए धन्यवाद। एंड यहाँ पर हम बढ़ते हुए द हैप्पी बर्थडे सरप्राइज,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो, RM2
2: रेडियो मस्ती।
0: पर मौका से निकल कर ना गिरिया जो वहां पर पहुंचा देती है आप सभी को। एंड लेट्स टॉक टू समवन रियली स्पेशल। वैसे अभी उनसे उनके पापा से बात करते हैं डायरेक्टली। शशि जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं तो ठीक हूँ, सुबह सुबह के टाइम हम कैसे ठीक न हो। वैसे यहाँ पर हमको मौका मिल रहा है टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ अ ब्यूटिफुल एंजल, उनका नाम है केमी, राइट? और केमी आपकी बेटी है।
3: हाँ,
0: और स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही है वो अपने आप को।
3: हाँ, आज एग्जाम है ना।
0: यस,
3: अभी सुबह सवेरे पूजा प्रार्थना पूजा पाठ हो गई।
0: हाँ, तो तैयारी हो गई। अभी उसने स्कूल यूनिफॉर्म तो पहन लिया, सब हाँ, ड्रेसिंग हो गई, बस्ता सब हाँ, कुछ ठीक है। और
3: हाँ, टिफिन तैयार कर रहे हैं।
0: हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया सब कुछ उसका?
3: हाँ, ब्रेकफास्ट भी हो गया।
0: हाँ, तो शशि जी क्या एक काम कर सकते हैं आप, उनसे हमारी बात करवा सकते हैं, राइट ना?
3: हेलो
0: शशि, नो अगठियो, आपका नाम है केमी। हाय केमी, गुड मॉर्निंग।
4: नमस्ते।
0: आपको पता चल गया ना, इट्स अ सरप्राइज, आवाज से मुझको पता चल गया। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू माई डियर केमी।
4: Merci. Thank you very much.
0: All the best for today's exam. और ये सरप्राइज आपके पापा ने किया है आपके लिए। और यहाँ पर आपसे बात करी है मनीषमा on RM2 Radio Masti. And I get a gift for you, my dear. You got here. Congratulations. In this morning में आपको मिल रहा है ये लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से a gift voucher.
4: Okay.
0: ओके, हैव अ वंडरफुल डे। कैसा चल रहा है, स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है ना आपको एग्जाम्स के लिए?
4: नहीं।
0: आज कौन सा पेपर है?
4: तैयार हूँ, ICT और इंग्लिश।
0: हाँ, ऐसा लग ही रहा है आपको, इतनी इंटेलिजेंट सॉन्ग कर रहे हो तो इंटेलिजेंट पेपर पे भी होगी। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल डे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम RM2 रेडियो मस्ती।
4: Thank you very much.
0: Bye bye. Hey. Listen, आप कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं? For someone, जैसे कि पापा है, आपकी बहन है?
4: जी।
0: उनका नाम क्या है?
4: गायत्री।
0: और साथ में परिवार में कौन कौन है?
4: पापा और दादी।
0: ओके जी, हैव अ वंडरफुल टाइम, एंजॉय योर बर्थडे, बाय बाय।
4: थैंक यू, बाय।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
5: RKG क्लासिक प्योगी विशेस ऑल डिवोटीज अ पाइस गोविंदन। RKG क्लासिक प्योगी अकंपेनिंग यू इन योर प्रेयर्स सिंस 1932, एन इंडियन क्लासिक प्योगी इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय RR रैपिड सर्विसेज लिमिटेड।
1: RM2
2: Radio Musti.

0: 7:30 बज रहे हैं, आप जुड़े हैं टू रेडियो मस्ती। आज है नेशनल कोचेस डे, ऑल्सो एक ऐसा दिन जो कोचेस को सल्यूट किया जाता है। वैसे जो सिर्फ गेम नहीं सिखाते बल्कि डिसिप्लिन में भी वो अवल रहते हैं, पेशेंस, टीम वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सिखाते हैं। एक अच्छा सा कोच, आप तो जानते हैं कि हमें सिर्फ जीतना ही लेकिन बल्कि हार के बाद दोबारा खड़े होना भी सिखा देते हैं।
1: Sports News. Radio Musti in the mix.
0: It's a big salute goes out to all the coaches and a very good morning to you, Arvind ji. Here we go for the sports updates.
2: Good morning, aapko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. Mauritius ki national football team, Club M ke do chehre. पिछले फ्राइडे को श्रीलंका के खिलाफ 3-0 की जीत, वही टीम वही मैदान पर इस बार 3-2 की हार। स्टीवन डे गोबिया और ओगेलियन फ्रांसवा मॉरिशस के स्कोरर रहे। क्लब एम के कोच रुई पेड्रो ने कहा कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, टीम ने अच्छा खेला, भविष्य उज्जवल है। बैडमिंटन में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन दिनों इजिप्ट में लग रहे हैं। मिक्स्ड टीम टूर्नामेंट में हमारे जवानों की पहली जीत हुई 2-0 से जिम्बाब्वे के खिलाफ। यूईएफए नेशंस लीग के लीग ए ग्रुप 1 में फ्रांस और इटली की जीत। जिनेदीन जिदान के लिए ब्लू बेल्जियम के खिलाफ 1-0 से हार रहे थे, पर मैन इन फॉर मिकाइल ओलिजे का डबल डेजिरे डुए और रियान चर्क की पासा पलट पाए। इस जीत से फ्रांस अपने ग्रुप में इटली से 3 अंक आगे है। इटली का स्क्वाड्रा अजूरा 3-1 से टर्की को हरा पाए। ज्ञान लूक का स्कमाका ने इटली का पहला गोल स्कोर किया। फिर सेकेंड हाफ में अराल सिमसीर ने बराबरी की। तुरंत रिकॉर्डो कालाफियोरी का गोल और तीसरा गोल बनाया पियो एस्पोजिटो ने। ग्रुप B2 में नॉर्दर्न आयरलैंड 0, जॉर्जिया 0, यूक्रेन 1, हंगेरी 2। ग्रुप B4 में बोस्निया 1, पोलैंड 0, रोमानिया 0, स्वीडन 1, स्वीडन के लिए ग्योकुरेस का गोल। फिर ग्रुप C2 में साइप्रस 2, लात्विया 1, मोंटेनेग्रो 0, आर्मेनिया 0। आज के फिक्स्चर्स, लीग ए ग्रुप 3 में क्रोएशिया वर्सेस स्पेन, इंग्लैंड वर्सेस चेक रिपब्लिक। स्पेन के लिए नो पेन, 3 मैचों में 3 विंस, फुल मार्क्स 9 पॉइंट्स, जबकि इंग्लैंड के पास 6 अंक है, क्रोएशिया के पास है 3 अंक। लीग बी ग्रुप 1 में स्कॉटलैंड वर्सेस स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड वर्सेस नॉर्थ मैसेडोनिया। लीग सी ग्रुप 1 में अल्बेनिया वर्सेस सान मारिनो, बेलारूस का सामना फिनलैंड से होगा। लीग सी ग्रुप 3 में कजाकिस्तान, फारो आइलैंड्स, मोल्डोवा, स्लोवेकिया और ग्रुप 4 में एस्टोनिया, आइसलैंड, लुक्जमबर्ग, बुल्गेरिया। आज के इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में टीम इंडिया फुटबॉल टीम खेलेगी उरुग्वे के खिलाफ, रशिया वर्सेस नाइजीरिया, अल्जीरिया वर्सेस निजेर, जॉर्डन वेनेजुएला।

चाइना वर्सेस ताजिकिस्तान और साउथ कोरिया का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से होगा। फ्रांस की टीम में कल लिवरपूल का डिफेंडर जेरेमी जाके नहीं था। स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन का प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल ड्यूटी पर इसाक भी घायल हुआ था। इंटरनेशनल ब्रेक काफी नुकसानदेह रहा इंजुरी लिस्ट में। काफी लोग आगे बोर्नमुथ का एलेक्स स्कॉट थाई इंजुरी, इससे द चेरीज नाराज है। फिर मैनचेस्टर सिटी से

0: सुजुकी रिब की समस्या, प्रीमियर लीग में इन तीन हफ्तों की छुट्टी में काफी क्लबों के लिए इंजुरी की समस्या गंभीर रही। प्रीमियर लीग की वापसी होगी इसी शनिवार, इसी सैटरडे को। सैटरडे मैच अर्ली किक ऑफ, आर्सेनल वर्सेस लीड्स। फिर 6 बजे एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी बोर्नमुथ, इप्सविच टाउन, फुलहम, संडरलैंड ब्राइटन, और लेट मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर। संडे फिक्स्चर्स क्रिस्टल पैलेस वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी एवर्टन, और द बिग वन लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये संडे रात को 7:30 बजे। टेनिस, चाइना ओपन में कल मेडवेदेव को डिस्क्वालीफाई किया गया। नोवाक जोकोविच के खिलाफ खेलते हुए गुस्से में आकर उसने एक स्पेक्टेटर को टीम टेनिस बॉल से मारा। इस प्रकार जोकोविच फाइनल में पहुंचा। यहां उसका सामना एलेक्स डेमिनो से होगा। जापान ओपन के फाइनल में है कार्लोस अल्काराज। सेमीफाइनल में उसने अपने हमवतन योम मुंडा को हराया। फाइनल में अल्काराज का सामना यरी लेहेका से होगा। और क्रिकेट में भारतीय दौरे पर आई वेस्ट इंडीज की टीम ODI मैचों के बाद अब T20 सीरीज में भाग लेगी। लखनऊ में आज 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम से ज्यादातर खिलाड़ी है इस T20 मैच के लिए। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आवाज सुन के आपको पता चल गया होगा कि इट्स नॉट गोइंग ऑन गुड दीज डेज। सर्दी, जुकाम, लाइट फीवर, आई एम सॉरी फॉर दैट। पर स्पोर्ट्स करेंगे तो फुल फिट हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा आज स्पोर्ट्स जरूर करेंगे।
1: Very good.
0: I'll catch you very soon. Take care. Bye bye.
1: Thank you so much, Vesey. Get well soon, always, and have lots of vitamin C and all, Arvind Ji, and have a wonderful day. Thank you so much for the updates about the sports world also.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
4: Music all day long.

0: could be for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 7:40 हुए हैं, आप जुड़े हैं RM2 Radio Musti this morning में. वैसे not to forget about your health and everything. वैसे अरविंद जी ने बोला कि थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं right now हम ना एक preparation करके आए हैं. And every day we're talking about fruit, ladies and gentlemen, a fruit. हमने शुरुआत की थी with an apple a day, keeps the doctor away, the bananas, papaya. And आज बात करते हैं about आम. जी हाँ, आम, mango. आपका फेवरेट फ्रूट है, मेरा भी. वैसे आम को राइटली कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स. अरविंद जी सुनिएगा, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं इस फ्रूट में. विटामिन ए जो होती है नॉर्मल विजन और हमारी जो इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द विटामिन सी ऑल्सो. लेकिन मैंगो नेचुरली स्वीट और कैलोरी डेंस होता है, इसलिए इसका जो मज़ा है लीजिए, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा. ओके, एंड आई होप कि आप हमारी सारी जो फ्रूट्स हैं, सारी जो बातें हैं, प्रैक्टिस में लाएंगे ज़रूर. एंड नॉट टू फॉरगेट, वी केयर अबाउट यू. आप हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो उठेंगे सुबह और हमको भी सुन पाएंगे. 24 आवर्स अ डे रेडियो always with you, आपका साथ ही है, हमेशा साथ निभाते रहेंगे. या फिर we continue with music. I hope you have a wonderful start in the morning.
1: Radio Musti, your number one Bollywood station.

0: taken from the movie Street 2. Hope you're having a wonderful day. वैसे प्रणाम. Radio Master Team connected from the hospital right now. अगला गाना सभी दोस्तों के लिए जो अभी काम पर है. वैसे शिफ्ट शुरू हो चुका है मॉर्निंग में. वैसे इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है. वैसे सारे जो ड्राइवर्स हैं अर्ली अर्ली काम करते हैं, 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं. वैसे काम शुरू और दिन शुरू एंड एवरीथिंग. यहाँ पर नाइस सिलेक्शंस, एंजॉयिंग इट. हेलो जी, नमस्ते. कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग, अ बर्थडे सॉन्ग फॉर माय लवली सिस्टर केमी. ओके, फ्रॉम पापा शशि. केमी का जन्मदिन तो आज हमने मना लिया. वैसे हैप्पी बर्थडे गुजरात निशाला. ये रहा लचमा दू ऑफ कोंगाफिया फ्लैक. पोपो की तरफ से सुकून. पोपा क्रेसन है एंड कजिन सिल्विया एंड पिछे तफरी के ये जो एड्रेस से यहाँ अपने भेजा है. थैंक यू सो मच. यहाँ पर लिटिल तेजस्वी दीवार रिसीव्ड हिज गिफ्ट वाउचर एंड केक ऑल्सो फ्रॉम द लोलो हाइपर मार्केट. थैंक यू सो मच रेडियो मस्ती. वैसे कितना प्यारा ये जो फोटो है अपने भेजा है तेजस्वी ट्विंस 4. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, हमको मिल गया ये फोटो. हैप्पी बर्थडे. आप खुश हो तो हम भी खुश है. वैसे हेमलता भंजन फ्रॉम पुएर्टो पिपा हियर एंड नमस्कार दिया, हैव अ वंडरफुल डे. वैसे बों को आज गुजार टू ईच एंड एवरीबडी जो काम में जो चुके हैं ना. गुड डे टू यू ऑल. ले लेते हैं अभी गिली छोटा सा ब्रेक, देन शो मी द ठुमका कमिंग अप.
1: ओएमजी रेडियो मस्ती.
2: Vous êtes grande nouveauté chez McDonald's. Découvrez le Spicy Chicken Fillet préparé avec du blanc de poulet 100% local. Du goût, du croustillant, une bonne dose de spicy et surtout, trois façons d'en profiter. En burger, en wrap ou en morceaux. À toi de choisir. Un nouveau goût bien de chez nous. Notre poulet, notre fierté. Local, never tasted this good.
3: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: Le nouveau Spicy Chicken Fillet à découvrir dès maintenant chez McDonald's.
4: Tech Mag, powered by
5: 365. Bien plus encore.
6: You record a school performance, football match or party, but the person you wanted to capture keeps moving out of the center of the video. Samsung's latest mobile software includes a feature called My Fan Cam. The user selects one person in a recorded video and artificial intelligence tracks that individual, automatically reframing the footage to keep them in focus. It could reduce the time people spend cropping and editing videos before sharing them, but it also illustrates how quickly sophisticated editing tools are becoming ordinary phone features. Your camera is no longer simply recording everything in front of it. It's beginning to understand which person matters to you and quietly rebuilding the video around them.
4: Tech Mag was powered by
5: 365. Bien plus encore.
3: RM2
4: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: 7:51 भी 51 मिनट हुए हैं. टुडे है विद बेस्ट रेडियो स्टेशन. ये है RM2 रेडियो मस्ती. वैसे एक बात तो है जो आपके साथ शेयर करनी थी. वैसे जिंदगी है, जिंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन हर दिन को पॉजिटिव बनाने की जो कोशिश है हम कर सकते हैं जरूर. वैसे हम हमेशा हर रोज लेकर आते हैं एक पॉजिटिव थिंकिंग. वैसे पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें, इसका मतलब है कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद ना छोड़ो. जब हम कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगी या फिर कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा, तो हम अपने माइंड को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि हम कर पाए. क्या कहते हो आप? वैसे हर दिन को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी. लेकिन आपको क्या करना है, बस कीप थिंकिंग द बेस्ट एवरी डे. टॉक that you will achieve what you have to achieve. वैसे इतने सारे लोगों के exams हैं, आपको all the best and don't be scared, don't be panic stricken. आपको जो करना है कीजिएगा. Concentrate, breathe, some breathing exercises, सब ठीक हो जाएगा. जो आपने सीखा है the whole year, the whole time, वही आपको लिखना पड़ेगा. डोंट बी स्केयर, डोंट बी यू नो पैनिकिंग एंड ऑल. जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल अचीव. यू विल राइट डाउन वट एवर यू थिंक इज बेस्ट. ओके, ऑल आंसर्स के लिए आपके लिए बेस्ट विशेज है. ओके जी, आई गेट हियर द नेक्स्ट सॉन्ग टू कीप यू कंपनी विद द बेस्ट एंड गुड वाइब हियर ऑन RM2 रेडियो.

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो
1: चलिए अब जुड़े रहिए थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे भोजपुरी के समाचारों की ओर तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड एंजॉय दिस म्यूजिक

नमस्ते सुनो भोजपुरी में समाचार। मॉरिशस में पानी के हालत चिंता बढ़ावत बा। जलाशय में औसतन करीब 60% पानी बचल बा, जबकि पिछला बरिस से यही समय स्तर 87% से जस्ती रहल। मोवाकवा में 36% और लानिकुलिया में खाली 6% पानी बचल बा। आवेला महीना में सामान्य के आसपास वर्षा होके के अनुमान बा। बकेर अबले पानी के जो न कमी बा ओकरा पूरा करे खातिर ई शायद काफ़ी कमती रही। हालात परी विचार करे खातिर आज दोपहरिया मंत्री पत्रिक आस्यावादन के अध्यक्षता में वाटर क्राइसिस कमेटी के बैठक लगी। कुतुहाफे में कई गो परिवार आजो पानी और बिजली के इंतजार कर रहा था। वंजा कुछ परिवार के जमीन के कॉन्ट्रैक्ट मिलला करीब 15 बरिस हो गल बा, बाकी जरूरी सुविधा अबले नहीं मिलल। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद CWA और CB के अधिकारी लोगन संगे इलाका के दौरा करलन। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में अब बड़ा बदलाव की जरूरत बा। विश्व बैंक अपन नवा रिपोर्ट में बोले बा कि गन्ना कपड़ा उद्योग और पर्यटन के सहारा देश विकास के कई दौर से गुजरलक। बकेरा अब लोग के बढ़त उम्र, घटत प्रतिस्पर्धा और ई सामाजिक खर्च के बढ़त बोझ नवा चुनौती बन गल बा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जरूरी सुधार करल गल त 2050 ले 37,000 से जस्ती कुशल रोजगार के मौका पैदा हो सकेला। ऑनलाइन सुरक्षा के लेके मेटा की एगो टीम आज और कल मॉरिशस में रही। सरकार के साथ बातचीत में युवा लोगन के ऑनलाइन सुरक्षा, फर्जी प्रोफाइल, खतरनाक कंटेंट और क्रेओल मॉरिशिया में कंटेंट पर निगरानी जैसन मुद्दा पर चर्चा हुई। सरकार चाहत बा की शिकायत मिलला के बाद खतरनाक कंटेंट जल्दी हटावल जाए। पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के बीच कोनो संबंध बा कि नहीं, अब मॉरिशस में एकर अध्ययन करल जाए। WHO और FAO ई काम में सहयोग करी। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अध्यक्षता में ई मुद्दा पर अंतर मंत्रालय समिति के पहला बैठक भयल बा। कुछ कृषि सामान में तय सीमा से जस्ती पेस्टिसाइड्स के अंश मिलला के बाद नियम में बदलाव पर भी विचार हो सकेला। गाड़ी के एग्जॉस्ट में बदलाव करके जस्ती आवाज निकाली ओला लोग पर कानून अब और ही सख्त हो गल बा। जनवरी से अक्टूबर ले पुलिस ई तरह के मामला में 289 कंट्रावेंशंस जारी कर ले बा। नवा नियम के तहत साइलेंसर में बदलाव करके जस्ती शोर करे परी 10,000 रुपया ले जुर्माना हो सकेला। दूसर देश के खबर में फ्लाई दुबई के एगो उड़ान में भयल गंभीर घटना के जांच जारी बा। अमरीकी और इजरायली मीडिया के खबर के मुताबिक दुबई से तेल अवीव जात विमान के को पायलट परी कॉकपिट में रखल कुल्हाड़ी से कप्तान पर हमला करे के आरोप बा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा करल गल बा कि को पायलट विमान के तेल अवीव में टकरावे की योजना बनाए ले रहल। यात्री और क्रू मिल के को पायलट के काबू में करलन जा और विमान के सुरक्षित सऊदी अरब में उतारल गल। और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले हवन की कुछ धमकी मिलने के बाद ब्रिटेन के और AFFD सैन्य अड्डा से अमरीकी सैन्य विमान हटा देवल गल बा। पेंटागन एकर पुष्टि कर ले बा। हालांकि धमकी कैसन रहल

0: एकल जानकारी अभी सामने नहीं आल बरतानी सरकार के कहना बाकी और एएफएफ एफर्ट सैन्य अड्डा सुरक्षित बा तो ये हाल हमने के भोजपुरी में समाचार हमने के सुन ला जा धन्यवाद
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: बजकर अभी 8 मिनट होने को है. आप जुड़े आर एम टू रेडियो मस्ती. एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर मी टाइम, योर लेजर टाइम. ऑल्सो वैसे काम करते करते थक जाते हो, लेकिन वैसे घर पहुँचते पहुँचते ट्राई टू फाइंड एंड मेक प्लानिंग टू टेक योर टाइम फॉर योर सेल्फ. वॉक के लिए जाओ, अपना अपना अच्छा अच्छा ये जो गाने हैं सुनते रहो, और ये जो योर मी टाइम है ना, डिपेंड्स व्हाट यू लव टू डू, व्हाट्स योर हॉबी. म्यूजिक के लिए, वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए योगा कीजिएगा, ब्रीदिंग कीजिएगा. आफ्टर वर्क यू टेक योर मी टाइम. ऑल्सो मैं ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ आपसे, 1 घंटे नहीं, 30 मिनट, बस इतना ही अपने लिए. यू जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, यू सी आफ्टर वर्क. अभी नहीं, अभी तो काम शुरू है, दिन शुरू है, अभी पॉज करें तो कब शुरू होगा, शाम को कीजिएगा. ओके, ट्राई टू इंक्लूड दैट योर मी टाइम इन योर प्लानिंग फॉर एवरी डे. आई एम टॉकिंग अबाउट मैन एंड वुमेन, बोथ ऑफ दम. ओके, एंड किड्स ऑल्सो. डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यू सी यूल काम योर सेल्फ एंड टेक लॉट्स ऑफ एनर्जी, यू नो, एंड गो फॉर वर्क. एन्जॉय योर टाइम, एन्जॉय योर डे, एंड अप्रिशिएट, बी माइंडफुल ऑल्सो. वेलकम बैक हियर. It's the second hour. अभी के लिए मौसम का हाल. Here we go.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है. पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और शाम तक देश भर में मौसम अच्छा रहेगा और धूप खिली रहेगी. केवल देर शाम को पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है. रात के मौसम की बात करें तो केवल पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और वर्षा की संभावना.

0: हैं। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 5:47 पर, सूर्यास्त 6:01 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Le kilo de lait entier en poudre Snowy à 219,95 € et le litre de nettoyant ménage et Doha à 89,95 €. De nombreuses offres vous attendent dans le rayon. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.mu.
4: On est tous Winners.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: राजेश मोहन की आवाज में हलकत जवानी की आवाज है फ्रॉम द मूवी हीरोइन. हियर वी गो.
1: मॉर्निंग बीट. ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स. A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
0: Chaliye ladies and gentlemen, 8:22 अभी 22 मिनट हुए हैं. आप जुड़े हैं RM2 Radio Musti के साथ. And here we go for the quote of the day. It always seems impossible until it's done. Nelson Mandela कहते हैं. दोस्तों, कभी कभी कोई गोल हमें इतना डिफिकल्ट लगने लगता है कि हम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, डर जाते हैं कि पता नहीं आउटकम कैसा होगा या नहीं. लेकिन एक एक स्टेप लेकर, छोटे छोटे स्टेप लेकर, पेशेंस और डिटर्मिनेशन के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है. आज बस शुरुआत कीजिएगा, बाकी आप ऊबर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए और बाकी रास्ता खुद ब खुद बन जाता है.

0: कहाँ खोए हो। 8:27 अभी 27 मिनट हुए हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन वी विल बी बैक विद द स्पोर्ट्स अपडेट्स, एक छोटा सा रिकैप। ओके जी,
1: RM2
2: Radio Musti
3: Oula Banzen, tu es né en 18 et 30 ans, nous péatons toi les 31 octobre, l'embrasure, le monde pour nous premier SBN Trail. Imagine un déco en plein attir, loin domaine.

0: 31 octobre. SBM Trail, parade ça!
1: RM2
2: Radio Musty.
1: Sports News.
2: Radio Musty in the mix.
3: एक रिकॉर्ड हो जाए. गुड मॉर्निंग अगेन.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. मॉरिशस की नेशनल फुटबॉल टीम क्लब एम के दो चेहरे पिछले फ्राइडे को श्रीलंका के खिलाफ 3-0 की जीत. वही टीम वही मैदान पर इस बार 3-2 की हार. स्टीवन डे गोबिया और ओगेलियन फ्रांसवा मॉरिशस के स्कोरर रहे. क्लब एम के कोच रुई पेड्रो ने कहा कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है. टीम ने अच्छा खेला, भविष्य उज्जवल है. बैडमिंटन में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन दिनों इजिप्ट में लग रहे हैं. मिक्स्ड टीम टूर्नामेंट में हमारे जवानों की पहली जीत हुई 2-0 से जिम्बाब्वे के खिलाफ. UEFA नेशन

0: लीग के लीग ए ग्रुप वन में फ्रांस और इटली की जीत। जिनेदीन जिदान के लिए ब्लू बेल्जियम के खिलाफ 1-0 से हार रहे थे, पर मैन इन फोर मिकाइल ओलिजे का डबल देजिरे डुए और रियांग चर्क की पासा पलट पाए। इस जीत से फ्रांस अपने ग्रुप में इटली से 3 अंक आगे है। इटली का स्क्वाड्रा अजूरा 3-1 से तुर्की को हरा पाए। ज्ञान लुका स्कमाका ने इटली का पहला गोल स्कोर किया। फिर सेकेंड हाफ में अराल सिमसीर ने बराबरी की। तुरंत रिकॉर्डो कालाफियोरी का गोल और तीसरा गोल बनाया पियो एस्पोजिटो ने। ग्रुप बी टू में नॉर्दर्न आयरलैंड 0 जॉर्जिया 0 यूक्रेन 1 हंगेरी 2। ग्रुप बी फोर में बोस्निया 1 पोलैंड 0 रोमेनिया 0 स्वीडन 1 स्वीडन के लिए योकुरेस का गोल। फिर ग्रुप सी टू में साइप्रस 2 लाटविया 1 मोंटेनेग्रो 0 आर्मेनिया 0। आज के फिक्स्चर्स लीग ए ग्रुप 3 में क्रोएशिया वर्सेस स्पेन, इंग्लैंड वर्सेस चेक रिपब्लिक। स्पेन के लिए नो पेन, 3 मैचों में 3 विंस फुल मार्क्स 9 पॉइंट्स, जबकि इंग्लैंड के पास 6 अंक है, क्रोएशिया के पास है 3 अंक। लीग बी ग्रुप 1 में स्कॉटलैंड वर्सेस स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड वर्सेस नॉर्थ मैसेडोनिया। लीग सी ग्रुप 1 में अल्बेनिया वर्सेस सान मारिनो, बेलारूस का सामना फिनलैंड से होगा। लीग सी ग्रुप 3 में कजाकिस्तान फराओ आइलैंड्स, मोल्डोवा स्लोवेकिया, और ग्रुप 4 में एस्टोनिया आइसलैंड लुक्जमबर्ग बुल्गेरिया। आज के इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में टीम इंडिया फुटबॉल टीम खेलेगी उरुग्वे के खिलाफ, रशिया वर्सेस नाइजीरिया, अल्जीरिया वर्सेस निजेर, जॉर्डन वेनेजुएला, चाइना वर्सेस ताजिकिस्तान और साउथ कोरिया का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। फ्रांस की टीम में कल लिवरपूल का डिफेंडर जेरेमी जाके नहीं था। स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन का प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल ड्यूटी पर ईसाक भी घायल हुआ था। इंटरनेशनल ब्रेक काफी नुकसानदेह रहा, इंजुरी लिस्ट में काफी लोग आगे। बोर्नमुथ का एलेक्स स्कॉट थाई इंजुरी, इससे द चेरीज नाराज है। फिर मैनचेस्टर सिटी से अर्लिंग हालैंड और निको ओगेली को भी चोट लगी है। लिवरपूल में कोडी गाक्पो भी इंजुरी लिस्ट में है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कप्तान ब्रूनो फर्नांडेज और डोगू फुल फिट नहीं है। फिर सन्डरलैंड में डैन बालाड और ब्रायन ब्रॉबे के लिए हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम। आर्सेनल से काई हावर्ट्स मसल स्ट्रेन, क्रिस्टोस जोलिस हैमस्ट्रिंग। एस्टन विला का गोलकीपर सुजुकी रिब की समस्या। प्रीमियर लीग में इन 3 हफ्तों की छुट्टी में काफी क्लबों के लिए इंजुरी की समस्या गंभीर रही। प्रीमियर लीग की वापसी होगी इसी शनिवार, इसी सैटरडे को। सैटरडे मैच अर्ली किक ऑफ आर्सेनल वर्सेस लीड्स। फिर 6 बजे एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी बोर्नमुथ, इप्सविच टाउन फुलहम, सन्डरलैंड ब्राइटन, और लेट मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर। संडे फिक्स्चर्स क्रिस्टल पैलेस वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी एवर्टन, और द बिग वन लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये संडे रात को 7:30 बजे। टेनिस, चाइना ओपन में कल मेदवेदेव को डिस्क्वालीफाई किया गया। नोवाक जोकोविच के खिलाफ खेलते हुए गुस्से में आकर उसने एक स्पेक्टेटर को टीम टेनिस बॉल से मारा। इस प्रकार जोकोविच फाइनल में पहुंचा। यहां उसका सामना एलेक्स डेमिनो से होगा। जापान ओपन के फाइनल में है कार्लोस अल्काराज। सेमीफाइनल में उसने अपने हमवतन योम मुंडा को हराया। फाइनल में अल्काराज का सामना यही लेहेका से होगा। और क्रिकेट में भारतीय दौरे पर आई वेस्ट इंडीज की टीम ODI मैचों के बाद अब T20 सीरीज में भाग लेगी। लखनऊ में आज 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम से ज्यादातर खिलाड़ी है इस T20 मैच के लिए। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आई कैच यू वेरी सून। टेक केयर। बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच। यू टेक केयर टू अरविंद जी।

क्या बात है, आई होप यू हैविंग वंडरफुल टाइम स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग. वैसे गुड मॉर्निंग टू यू मीठी मीठी आशनी. क्या बात है आरवी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज. वैसे बहुत खुश गुजरात हूँ ईच एंड एवरीबडी जो काम पे जा रहे हैं, वैसे काम में जुड़ चुके भी हैं, वैसे हमारे साथ भी निभा रहे हैं. चलिए चुपके नेक्स्ट सॉन्ग के साथ यू माई ब्यूटिफुल लेडी, योर टीम फ्रॉम थिंकी टू माई फ्रेंड पविता, पिचू, मालिनी, जेशनी एंड गुड डे टू यू टू. वैसे साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि आज हम मना रहे हैं न सिर्फ आप सभी का जन्मदिन, एवरीबडी सेलिब्रेटिंग देयर जन्मदिन आज. हैप्पी बर्थडे के साथ टू ईच एंड एवरीबडी. वैसे आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना को हम बधाइयां देना चाहते हैं. वैसे उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1946 में हुआ था उनका जन्म. यस, उन्होंने अपनी पावरफुल पर्सनालिटी, शानदार एक्टिंग और मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस से बॉलीवुड में एक खास जगह बना पाई. वैसे अमर अकबर, एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी और दयावान जैसी फिल्म्स में उनके आइकनिक रोल्स भी उनको याद किया जा रहा है. वैसे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और ग्रेसफुल साल ने सभी जेनरेशंस को छू लिया. वैसे उनके हमारी जिंदगी में वो हमेशा शामिल है. वैसे विनोद खन्ना जी को उनके बर्थ एनिवर्सरी पर दिल से याद करते हुए हैप्पी बर्थडे टू द एवरग्रीन स्टार, हैप्पी बर्थडे टू यू टू.

0: रेडियो मस्ती।
1: 8:42 हुए वैसे नमस्कार जी, गिव अ सॉन्ग फॉर प्रेमा लक्ष्मण ऑन हर बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मम डैड एंड मेदा जगदीश एंड आवर साई ग्रुप आल्सो ट्यूनिंग टू आवर इनटू रेडियो मस्ती। हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय मैक्सिमम। हमेशा ये दिन जब आता है वैसे मायूस होने की कोई वजह नहीं है, यू जस्ट हैव टू सेलिब्रेट। वैसे यू नो इस दिन को आप पॉजिटिविटी के साथ लीजिएगा एंड ट्राई टू रिमेंबर कि हर एक मिनट काउंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, और लाइफ इज मेंट टू सेलिब्रेट। ओके, हर एक दिन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी आँखें खुली है, यू आर ब्रीदिंग, यू आर हेल्दी, यू आर गुड, यू हैव फूड, यू हैव शेल्टर, यू हैव क्लोथ्स, एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट इन लाइफ ऑल्सो। मैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ यूं ही आप जुड़े रहिए।

वैसे इसी गाने के साथ जाने का समय हो चला है. होप यू हैड अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग एंड बोंको हर्ष के साथ ईच एंड एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती विकास आ रहे हैं. साथ निभाते रहिएगा. यू टेक केयर. बाय बाय.

0: समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का 9 बजे के बुलेटिन में। मॉरिशस में पानी की कमी लगातार चिंता बढ़ा रही है। जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय यह स्तर 87% से ज्यादा था। मोवाक्वा सिर्फ 36% और लानिकुलिया महज 6% भरा हुआ है। आने वाले महीनों में बारिश सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन इससे पानी की मौजूदा कमी पूरी होने की उम्मीद बहुत कम है। हालात पर चर्चा के लिए आज दोपहर बाद मंत्री पात्रिक आसियावादन की अध्यक्षता में वाटर क्राइसिस कमेटी की बैठक लगने वाली है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मॉरिशस की इकोनॉमी को अब बड़े बदलावों की जरूरत है। विश्व बैंक ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि गन्ना, कपड़ा उद्योग और पर्यटन ने लंबे समय तक देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब बढ़ती उम्र की आबादी, कमजोर होती प्रतिस्पर्धा और सामाजिक खर्च अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही है। विश्व बैंक ने ज्यादा आमदनी देने वाली सेवाओं और डिजिटल सेक्टर को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। उसके मुताबिक जरूरी सुधार किए गए तो 2050 तक 37,000 से ज्यादा कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मेटा की एक टीम आज मॉरिशस में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने, फर्जी प्रोफाइल्स पर रोक लगाने और खेल मोरिशिया में कंटेंट की निगरानी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि शिकायत मिलने पर गलत या खतरनाक कंटेंट को जल्द हटाया जाए और पुलिस को जांच में बेहतर सहयोग मिले। विदेशी स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें ये खबर, फ्लाई दुबई की एक उड़ान में हुई गंभीर घटना की जाँच जारी है। अमरीकी और इसराइली मीडिया के मुताबिक दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान के को पायलट पर कप्तान को कुल्हाड़ी के से घायल करने का आरोप है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वो विमान को तेल अवीव में टकराना चाहता था, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यात्रियों और क्रू ने को पायलट को काबू में किया, जिसके बाद विमान को सुरक्षित सऊदी अरब में उतारा गया। तो इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मैंने कहा कि नॉमच का नॉम है, और ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे सरप्राइजेस जो कभी भी आप सोचते नहीं और सडनली हो जाते हैं, उनको देखकर हैप्पी हो, जैसे कोई एकदम से दिख गया हैप्पी हो गए, वो मैं कहता हूँ काम हो गया एकदम से, पता लगे गुड न्यूज आ गई, हैप्पी हो जाओ। यू नीड टू बी कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स, और फिर देखिए साहब सब कुछ ठीक होता है, वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं और वो जो आपको म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं। आर एम टू रेडियो मस्ती एम टू पी एम आपके साथ एंड कंटिन्यूज टिल 12 पी एम, जानते हो ना मस्त मॉर्निंग शो। तो चलिए साहब सुबह की भागदौड़ी, और बहुत सारे लोग अभी भी ट्रैफिक में फंसे हैं। ये ट्रैफिक में कभी लगता है कि नहीं ट्रैफिक लाइट तो वही है, ये आज मेरे को देख के लाल क्यों हो रही है, कल तो ग्रीन हो गई थी। वो टाइम टाइम की बात है, कहीं लोग जो सुबह जल्दी निकल जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि जल्दी निकलेंगे लेकिन लेट हो जाते हैं। सुबह ना कुछ काम नहीं करता, जो भी प्लानिंग कर लो, क्योंकि आपकी वो पैंट नहीं मिली ना या फाइल नहीं मिली जो रात को प्लान नहीं की थी, तो थोड़ी सी प्लानिंग और बाकी हमने प्लानिंग कर लिया। बेस्ट मिक्स म्यूजिक बी टाउन की खबरें बात करने वाले हैं, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विनोद खन्ना साहब, चले कुछ गाने उनके जरूर ऐड करने की कोशिश करेंगे, और वहीं पर आपके मैसेजेस डू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग, थोड़ी देर में आपकी राशियां भी।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: अदनान साहब साहब कुछ अलग ही स्टाइल उनका, वो भी थोड़ा वो स्टाइल में अभी दे दो ना, यानी कि हवा चल पड़ी, अब लिफ्ट तो आपको भी मिलेगी।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: जय साहब, वक्त हो गया कि सितारों की चाल जान ले और शुरुआत करते हुए। एरीज जो आपका कॉन्फिडेंस है वो फुल ऑन टर्बो मोड में है, लेकिन याद रखिए हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। काम के अंदर क्लियर कम्युनिकेशन आपकी सुबह भाव बनेगी और रिलेशनशिप में दिल की बात सीधा बोलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हाँ, लेकिन बस टोन, ये जो टोन होती है रिंग टोन की तरह ना हो जाए कि बस्ती चली जाए। इसमें मिर्ची कम रखिए और खुशबू ज़्यादा, मिठास ज़्यादा। भाई आज का मंत्र ये होगा कि कॉन्फिडेंट रहूँगा पर काम रहकर जीना जीनता, और साथ साथ में जितनी भी बातें हैं उनको आराम से सोच समझ कर ही करूंगा।
2: टॉरस
0: वृषभ राशि, आज मोटिवेशन का स्विच ऑन करना है, कोई एक्साइटिंग आइडिया या प्लान आपको एक्शन लेने के लिए पुश करेगा, लेकिन एक्साइटमेंट में प्रैक्टिकल डिटेल्स को इग्नोर मत कीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लव लाइफ में केमिस्ट्री अच्छी होती है, बायोलॉजी भी ठीक रखो, बस चीज़ों को नेचुरली ग्रो होने दीजिए। आज का मंत्र है एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी सी कॉमन सेंस, ये होगी विनिंग कॉम्बिनेशन।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: भाई लाइफ की स्पीड थोड़ी सी स्लो मोशन हो सकती है और सरप्राइज ये बुरी बात नहीं है, थोड़ा पॉज लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, जिस सॉल्यूशन को आप फोर्स करके ढूंढ रहे थे वो शायद रियलाइज करते ही सामने आ जाए। इमोशनल डिसीजन, अरे थोड़ा ब्रेक लगाइए, उसके बाद देखिए सब ठीक। पॉज करना प्रोग्रेस को रोकना नहीं, समझना है।
2: कैंसर कर्क राशि,
0: आज स्पॉटलाइट आपके हार्ड वर्क पर रहेगी, जो एफर्ट आप क्वाइटली कर रहे थे उसकी अप्रिसिएशन मिल सकती है। कॉम्प्लीमेंट मिले तो अरे हमने कहा कुछ किया, नहीं नहीं नहीं, अगर आपने किया है तो थैंक यू बोलना भी सीखिए। फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप में वार्म्थ बनी रहेगी। आज का मंत्र, मैं अपनी मेहनत और अपनी वैल्यू को प्राउडली एक्सेप्ट करना जानता हूँ।
2: लियो सिंह राशि,
0: लियो जो भी काम मिले उसको कर दियो, बस बॉस बनने और लीडर बनने में डिफरेंस होता है, टीम को साथ लेकर चलना ये अच्छी बात है, रिजल्ट भी अच्छा रहता है। कंट्रोल नहीं, कोलैबोरेशन, ये है द राइट वर्ड, लीड करता हूँ लेकिन डोमिनेट नहीं।
2: वर्गो कन्या राशि,
0: भाई ओल्ड स्कूल विजडम है वो गोल्ड है, प्रूवन मेथड्स, एक्सपीरियंस, लोगों की एडवाइस और सिस्टमैटिक अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकती है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। नहीं, स्लो और स्टेडी अप्रोच आपकी रियल विनर बन सकती है, कंसिस्टेंसी ये बनेगी आपकी सीक्रेट सुपर पावर।
2: लीब्रा तुला राशि,
0: लीब्रा एक स्वीट कॉन्वर्सेशन या थॉटफुल जेस्चर आपका मूड बना सकती है, आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी, आपकी एम्पैथी, ये सब कमाल कर सकती है। फ्रेंडशिप हो या रोमांस, कनेक्शन नेचुरली स्ट्रांग हो सकते हैं, बस हर छोटी बात को ओवर एनालाइज मत कीजिए, बाल की खाल, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यस, दिल से कनेक्ट करो और हर बात से डाइसेक्ट मत करो।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: भाई माइंड आज थोड़ा डिटेक्टिव मोड में जा सकता है, लेकिन हर साइलेंस का मतलब सीक्रेट और हर डीले का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, फैक्ट्स को फेयर से अलग रखिए, करियर में रिकग्निशन मिल सकती है तो अपनी अचीवमेंट को कॉन्फिडेंटली ओन कीजिए, जरूरी है। आज का मंत्र, फेयर नहीं, फैक्ट्स मेरे डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे।
2: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बहुत कमाल की है, कॉन्फिडेंस ये भी पावर कॉम्बो बन के आएगा, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी आपके पास हैं उनका स्मार्ट यूज कीजिए। बस एक वार्निंग, सिर्फ इसलिए आर्ग्यूमेंट मत कीजिए क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि आप राइट हो, अगर सही बात नहीं है तो क्यों, समटाइम्स पीस इज बिगर देन अ विन, हर बैटल जीतना जरूरी नहीं, सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: कैप्रिकॉर्न आज फ्यूचर प्लानिंग का दिन है, करियर, मनी या पर्सनल गोल्स, ये जो ऑप्शंस है ना उनको कंपेयर कीजिए और फिर डिसीजन मिल जाएगा, बहुत ही करीब, बहुत ही क्लियर, जल्दी में हाँ बोलने से बेटर है कि थोड़ा सोच करिए इसको, आज का पेशेंस कल का प्रॉफिट बन सकता है। आज का मंत्र, मैं आज स्मार्ट प्लानिंग करूं तो कल मेरी पोजीशन काफी स्ट्रांग हो सकती है।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: एक्वेरियस आज शॉर्टकट से ज्यादा स्टेडी एफर्ट का मैजिक चलेगा, डिटेल्स पर फोकस कीजिए, पेंडिंग काम निपटाइए और बाउंड्रीज क्लियर रखिए, रिजल्ट शायद इंस्टेंट ना आए पर जो फाउंडेशन आपने बनाई ना वो सॉलिड होगी, सॉलिड बोले तो सॉलिड है, स्पीड से नहीं कंसिस्टेंसी से मेरी स्टोरी बनती है।
2: पाइसेस मीन राशि,
0: पाइसेस बोले तो आज दिल को एक लिटिल हैप्पी डांस करने का मांगता है बॉस, कोई विश या लॉन्ग अवेटेड होप रियलिटी के थोड़े और करीब आ सकती है, क्रिएटिविटी भी हाई होगी, बस रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम्प्लीटली इग्नोर मत करना, हैप्पीनेस को एंजॉय कीजिए गिल्ट के बिना। आज का मंत्र, जो अच्छा है उसे फील करो, सेलिब्रेट करो और ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करो।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

Yes, latest on the screen, we talk about Drishyam, जो काफी कमाल कर रही है और बहुत ही कमाल की है। अजय देवन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग, धुरंधर से लेकर पठान और एनिमल के टूटे रिकॉर्ड्स। He is also talking about एक पिता की रिलेशनशिप अपने फैमिली के साथ, इसमें जरूर दिखती है जहां पर he goes to any extent to save the family, है ना? लेकिन कुछ और बातें हैं। भाई आमतौर में माना जाता है कि बेटे अपनी मम्मी के साथ ज्यादा करीब होते हैं। पिता और बेटे के बीच प्यार और अपनापन, वो एक रिस्पेक्ट कह लो या डर एक फेयर, लेकिन दोनों अक्सर अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं कर पाते। ऐसे में सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो जिसमें जहां पर पिताजी और बेटे के बीच में जो कमाल का एक बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है, जहां पर एक इमोशनल सपोर्ट नहीं बल्कि बेटे के जो कॉन्फिडेंस है ना उसको भी मजबूत करता है, वहीं पर मुश्किल समय में उसको हिम्मत मिलती है। रिसर्च बताती है कि जिन पिता और बेटे के बीच बचपन से मजबूत रिश्ता था उन्हें आगे चलकर रोजमर्रा के तनाव से निपटने में ज्यादा मदद मिलती है। बहुत कमाल

0: राधिका इमोशनल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. देखिए अगर हम बात करें साइकोलॉजी की तो ये बता होता है कि पिता एक पिलर की तरह पीछे खड़ा है और लगातार बहुत सारे कपल्स पर ये हुआ सर्वे जहाँ पर टीम ने कहते ना जिन पुरुषों के बचपन में अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते थे उन पर तनावपूर्ण घटनाओं का असर कैसा रहा, तुलना में कम हुआ, कहाँ पर कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन में, कैसे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, ये बहुत बड़ी बात है. इसलिए बहुत ज़रूरी है यू एज अ पेरेंट मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, खाली वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

लगता नहीं कि हम इतने बिजी हो चुके हैं कि कभी कभी लगता है कि एक छोटी सी बात, किसी के साथ प्यार भरी बात, या फिर खाली ऐसे ही मैसेज के जरिए मुलाकात, क्यों ना हम तुम निकल पड़े।

सीधा अब 10 बजे के समाचार की ओर, इसके बाद फिर से मुलाकात होने वाली है. यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड, अगर रोड पर है. एंड कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस, जहां पर बता रहे हैं कि दिन की तैयारी फुल ऑन चल रही है.

गुड मॉर्निंग आप सभी को, 6th अक्टूबर ट्यूसडे का दिन, कैसे रहे न्यूज और इन्फॉर्मेशन के बिन? तो चलिए साहब शुरुआत करते हैं, आगे स्टूडियो में आसान मिलते हैं जल्दी ही।

0: नमस्कार आशा।
1: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में पानी की कमी लगातार चिंता बढ़ा रही है। जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय ये स्तर 87% से ज्यादा था। मोवाक्वा सिल्फर 36% और लानी कुलिया महज 6% भरा है। आने वाले महीनों में बारिश सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन इससे पानी की मौजूदा कमी पूरी होने

0: की उम्मीद कम है। हालात पर चर्चा के लिए आज दोपहर मंत्री पत्रिक आसियावादन की अध्यक्षता में वाटर क्राइसिस कमेटी की बैठक लगेगी। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को अब बड़े बदलावों की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि गन्ना, कपड़ा उद्योग और पर्यटन ने लंबे समय तक देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब बढ़ती उम्र की आबादी, कमजोर होती प्रतिस्पर्धा और बढ़ता सामाजिक खर्च अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही है। वर्ल्ड बैंक ने ज्यादा आमदनी देने वाली सेवाओं और डिजिटल सेक्टर को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। उसके मुताबिक जरूरी सुधार किए गए तो 2025 तक 37,000 से ज्यादा कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मेटा की एक टीम आज मॉरिशस के अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाली है। बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने, फर्जी प्रोफाइल्स पर रोक लगाने और क्रियोल मॉरिशिया में कंटेंट की निगरानी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि शिकायत मिलने पर गलत या खतरनाक कंटेंट को जल्द हटाया जाए और पुलिस को जांच में बेहतर सहयोग मिले। मॉरिशस में अब ये पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाने वाला है कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल का कैंसर से कोई संबंध है या नहीं। WHO और FAO इसमें सहयोग करेंगे। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर अंतर मंत्रालय समिति की पहली बैठक लगाई गई। कृषि उद्योग कुछ कृषि उत्पादों में तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक मिलने के बाद नियमों पर फिर से गौर किया जाएगा। और विदेश स्तर पर फ्लाई दुबई की एक उड़ान में हुई गंभीर घटना की जांच जारी है। अमरीकी और इजरायली मीडिया के मुताबिक दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान के को पायलट पर कैप्टन को कुल्हाड़ी से घायल करने का आरोप है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वो विमान को तेल अवीव में टकराना चाहता था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: On NBC Podcast.

0: दस मिनट, और आपको पता है कि पहले घंटे में कुछ ऐसी हुआ था, 9:09 थे, अब 10:10 नहीं करेंगे बस।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: Yes, let's get the mood on. जितने भी लोग अभी हमें आए सुन रहे हैं, so thank you so much for tuning in. स्टूडियो में बस आपके साथ हमेशा

0: एकर जरूरत नहीं पड़ी काहे की हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
1: फूफ, quand sa digestion là paraît difficile. Me prends une daï, me bois. Daï, un tas probiotique et que fermo actif pour aider sa digestion là.
2: You play.
3: Un produit made in Maurice.
4: La fête année décostée, tu ne parais?
5: Pas juste l'année, un tas dépenses aussi.
4: Mais Rogers Capital là même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client code Rogers Capital, pégaye 500 roupies rabais, l'os de première mensualité.
5: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
4: Application facile! Zis avec ton code identité.
5: Astez à me faire l'année sans tracas.
4: Attendez, fais ou application premier crédit code Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit. Opère sous licence de la FSI.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग और किसी वर्जन में सुन लो उतना ही पसंद होता नहीं। तू मुझे जान से भी प्यारा है और यही मैसेज हमारा है कि जिंदगी है साहब प्यार मोहम्मद में बिता लो।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: वैसे कहते हैं कि शुरुआत होती है फ्रेंडशिप, उसके बाद आगे बढ़ती है रिलेशनशिप और उसके बाद ये शिप है वो सेल कर जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो इमोशनल हैंगओवर है ना, यानी कि झगड़ा और झगड़ा खत्म होने के बाद भी मन भारी, बेचैनी या परेशानी और रिश्तों में साफ नजर आता है। झगड़े के बाद कैसे खुद को संभाले। देखो कभी कभी झगड़ा खत्म होने के बाद भी मन शांत नहीं होता, सामने वाला बात कर लेता है लेकिन वही बात बार बार आती रहती है दिमाग में और चुभने लगती है। इसे आसान भाषा में इमोशनल हैंगओवर कहा जाता है। भाई सच बात है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सिर्फ शब्द नहीं सुनते बल्कि सामने वाले का जो एटीट्यूड है, जो लहजा, डर, सब कुछ महसूस करते हैं और वो चीज़ें एक पैकेज के तौर पर आपके अंदर बैठ जाती हैं और फिर बेचैनी बढ़ सकती है। जब कोई बात हमें ज़्यादा चोट पहुंचाती है तो दिमाग उसे आसानी से छोड़ नहीं पाता, बार बार राउंड अबाउट की तरह गोल गोल गोल गोल गोल। इमोशनल हैंगओवर के दौरान सिर्फ ताज़ा बहस याद नहीं आती, पुरानी नाराज़गी हो, पुराने ताने हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे में खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए संभालने के लिए। भाई हर बात का जवाब या फैसला लेना ज़रूरी नहीं है, कुछ देर शांत रहिए, पानी पीना, टहलना या फिर दोस्तों से बात करके मन को हल्का करना, गुस्सा कम हो जाएगा। और देखिए साहब, पार्टनर से अपनी बात शांत तरीके से करें, आरोप लगाने के बजाय अपनी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में बताएं कि मुझे किस बात पर बुरा लगता है, या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, दोनों मिलकर समझ सकते हैं कि असली परेशानी कहाँ पर है। और उसके बाद देखिए साहब, अगली बारी ऐसी सिचुएशन आएगी तो बात यूं ही आराम से निकल भी जाएगी। दो लोग जो कभी थे एक दूसरे की ज़िंदगी, वो क्यों बन के रहे अजनबी, वो

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.
3: चलिए साहब अभी के लिए बात करते हैं फैशन की और फैशन पुलिस इज ऑन देखने के लिए कि क्या पहन रहा है कौन आज का स्टाइल सिग्नल आ रहा है और बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फैशन फैमिलीज में से एक है कभी खुशी कभी गम चलो उसी की बात करते हैं हम आज आउटफिट्स में थोड़ा सा रॉयल टच ऐड कीजिए लेडीज एलिगेंट कुर्ता सेट फ्लोई साड़ी या स्टेटमेंट दुपट्टा उसके साथ झुमकास एंड अ टच ऑफ गोल्ड हाउ अबाउट दिस It's all about the family and the fashion, right? आइए भी सजे कि ठंडी हवा थोड़ी चल रही है और मौसम अभी इतनी गर्म की रिपोर्ट नहीं दे रहा है सो एक वेल फिटेड शर्ट एंड टेलर ट्राउजर्स या क्लासिक कुर्ता एक कलरफुल जैकेट प्रॉब्ली हाँ जो पहनते हैं कलर्स में नेवी क्रीम या फिर मरून या डीप ग्रीन ट्राई कीजिए क्लासी भी लगेगा और थोड़ा फिल्मी भी और हाँ फैशन का गोल्डन रूल ये है कि एक ही आउटफिट में सब कुछ लाउड मत कर देना अगर ज्वेलरी स्टेटमेंट है तो आउटफिट थोड़ा सटल रखो कि ज्वेलरी निखर कर आ सके और अगर आउटफिट ड्रामेटिक है तो एक्सेसरीज को थोड़ा सा चिल करने दो यानी कि सिंपल हो या शाही कॉन्फिडेंस के बिना लुक है अधूरा
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.

0: 6th of October, ladies and gentlemen, Tuesday ka din, time check exactly 11 a.m. वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का, स्टूडियो में आ गया, आस्था उनसे मिलते हैं, नमस्कार।
1: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर हैरेसमेंट, फर्जी प्रोफाइल्स और खतरनाक कंटेंट, इन बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा के लिए मेटा की एक टीम आज और कल मॉरिशस में रहेगी। सरकार के साथ बातचीत में बच्चों की सुरक्षा, उम्र की जांच और खेल मुगसिया में कंटेंट मॉडरेशन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल चाहते हैं कि शिकायत मिलने पर आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाया जाए और पुलिस जांच में भी बेहतर सहयोग पुलिस की ओर से जांच में भी बेहतर सहयोग मिले। क्या पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के मामलों के बीच कोई संबंध है? मॉरिशस में अब इसका वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाएगा। WHO और FAO के सहयोग से एक अध्ययन की तैयारी है ताकि पेस्टिसाइड्स के संपर्क और स्वास्थ्य पर उसके संभावित असर का पता लगाया जा सके। इसी मुद्दे पर अंतर मंत्रालय समिति की पहली बैठक एबेन में कृषि उद्योग मंत्री डॉ अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में लगी। कुछ कृषि सामानों में तय सीमा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स मिलने के बाद नियमों पर फिर से गौर किया

जाने वाला है। तेज आवाज करने के लिए गाड़ियों के एग्जॉस्ट में बदलाव करने वालों के खिलाफ अब कानून और सख्त होगा। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक पुलिस ने ऐसे मामलों में 289 कंट्रावेंशन जारी किए हैं। रोड ट्रैफिक एक्ट में हल्के बदलावों के बाद ज्यादा शोर पैदा करने के लिए साइलेंसर में बदलाव करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर अनावश्यक शोर को कम करने के लिए जांच जारी रहेगी। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अपने 40 साल पूरे होने पर स्थानीय सिनेमा और नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें नेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2026 भी शामिल, जो अनुभवी और नए दोनों फिल्म मेकर्स के लिए खुला है। प्रतियोगिता में 3 श्रेणियां रखी गई हैं, पारंपरिक तरीके से बनाई गई फिल्में, एआई की मदद से तैयार फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में। इसके अलावा सिनेमा वीक, अलग अलग कार्यशालाएं और देश भर में फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग्स आयोजित की जाएंगी। विदेश स्तर पर भारत में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव को लेकर विरोध तेज हो गया है। विपक्षी दलों और युवा संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। आज नई दिल्ली में विपक्षी सांसदों और युवा आंदोलन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए और कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।

5 past 11 शुरुआत तीसरे घंटे की विद सावरिया. कितना बढ़िया. Ladies and gentlemen, music का free flow, चाहे कहीं भी हो, बस simply बैठ कर मजे लो, enjoy the music. And ये जो music थेरेपी ना काफी कमाल कर देती है. RM2 AM2 PM आपके साथ.

0: 102 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मूसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: La fin d'année des costés, tu ne parais?
3: Pas ici l'année, et ta dépense aussi.
2: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client côte Rogers Capital pégaye 500 roupies rabais, l'os de première mensualité.
3: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
2: Application facile! Zis avec ton code identité.
3: Asté à mon faire l'année sans tracas.
2: Attendez, fais ou application premier crédit côte Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre.

बस हो गया तुम्हारा, मतलब ऐसा होता है बॉलीवुड के अंदर लड़का हाथ धो के क्या नहा धो के पीछे पड़ जाता है और फाइनली आवाज आती है, नहीं ये शादी नहीं हो

0: सकती है फॉर व्हाट रीजन, चलिए जानते हैं।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: भाई बारे की बात है कि पप्पू भी पहुंच गया था शादी में और पिताजी ने पहचान लिया, अरे ये तो तुम्हारी बहुत पहले की गर्लफ्रेंड थी यानी कि मेरी बेटी, अब तुम शादी में क्यों आए हो? तो पप्पू ने कहा देखिए साहब ऐसा है कि मैं तो क्वार्टर फाइनल में आउट हो गया था, अब फाइनल देखने आया हूँ। क्या बात करता है लड़का है ना। एनीवेज टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर आप कहाँ पहुँचते हैं, और एक गोल्डन सिंपल रूल याद रखिए कि टाइम को चेज मत करो, टाइम को स्केड्यूल करो, ये ज़रूरी है। सुबह उठते ही 20 काम की लिस्ट देखकर पैनिक मत हो जाओ, पहले डिसाइड करो कि आज असली हीरो कौन सा है, यानी कि किस काम को पहले करना। और एक गोल्डन टिप, 5 मिनट का रूल, कोई काम छोटा है बस बोलो 5 मिनट करूंगा, स्टार्टिंग हो गई तो मोमेंटम खुद आ जाएगा, बस सोच लो इतना ही टाइम रहेगा। फोन को पॉकेट में रखो, प्रायोरिटी को पॉकेट में मत रखो, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट नहीं होती, और कभी कभी डू नॉट डिस्टर्ब का मोड अच्छा काम करवाता है। तो दोस्तों मल्टीटास्किंग का मिथ छोड़िए, एक वक्त में एक ही काम, फुल फोकस, फुल पावर और फुल रिजल्ट के साथ। तो इसलिए आज का यही मंत्र होगा कि लिस्ट छोटी रखो, फोकस बड़ा रखो और टाइम को बॉस बना लो, बॉस का एम्प्लॉय नहीं। इसे सोच लो कि आप टाइम को स्केड्यूल करेंगे, उसको अपना बॉस मत बनने दो। तो क्लॉक करेगी टिक टिक टिक, लेकिन ऐसे नहीं कि काम होता जाएगा ऑटोमेटिक टिक टिक, उसको भी स्केड्यूल करना ही पड़ेगा।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Jai Siaram!
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: जो हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, जो पॉजिटिविटी है, वो ऐसे खून में बढ़ती रहे। अच्छा, खून की बात करें तो ना सुई लगवानी पड़े और ना खून निकलवाना पड़े, और सिर्फ 20 सेकेंड की आवाज से पता चल जाए कि शुगर बढ़ी है या नहीं। नहीं, ये सच बात है। AI टूल, चलिए बात करते हैं इसकी। काफी इंटरेस्टिंग भाई। अभी तक अगर आपको हाई शुगर की जांच करवानी तो लैब में जाकर सुई से खून निकलवाना पड़ता था। कई सारे लोग सुई लगने और खून निकलवाने के नाम से डर जाते थे, लेकिन फिर भी भाई करना ही पड़ता है टेस्ट, क्या करें। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है, क्योंकि एक ऐसा AI टूल बन गया है जो केवल आवाज से ही 20 सेकेंड के अंदर बता देगा कि डायबिटीज है कि नहीं। नाउ दिस इज अमेजिंग। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, देखो ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि सुबह खाली पेट शुगर लेवल देखना और तीसरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी जिसने बनाया, उन्होंने ये कहा कि ये सिस्टम ऐसा काम करेगा कि सांस पर आपका जो कंट्रोल है ना, कम होना या फिर कर्कश आवाज़, जैसे टाइप 2 डायबिटीज से जुड़े आवाज़ में आने बदलाव, वो पता लगने लग जाते हैं। लेकिन अब सोचिए, आपको पता है कि आप एक टेस्ट करने वाले हैं तो पहले से घबराहट शुरू होती ना। अब बोले क्या, नहीं मैं क्या कहूँ भाई, इसको तो डायबिटीज है, इसलिए गला साफ करो और उसके बाद जोश में बात करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, इसको नहीं है। ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें इस चीज़ के साथ जुड़ी हैं। लेकिन एनालिसिस बहुत हो रहा है, जिसके अंदर 801 लोगों के एक सब ग्रुप की जांच की गई। इन लोगों ने अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग जमा करने के 3 महीने के अंदर ही घर पर ब्लड टेस्ट भी करवाए थे, और फिर एल्गोरिथम करा गया, देखा गया कि इसमें ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं। और जब सिस्टम काफ़ी सरप्राइजिंगली अच्छे आने लगे तो फिर आगे बढ़ रही है ये टेक्नोलॉजी। इस टूल से डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग बदलने की संभावना है। स्पीच सैंपल फोन ऐप के जरिए भी लिया जा सकेगा देखते आने वाले टाइम में।

न्यू ऑन द ब्लॉक, लेकिन काफी सूदिंग नहीं आने वाले गाने कुछ इंटरेस्टिंग जरूर हो रहे हैं। एंड अभी हेलो गोज आउट, कहते हैं कि आलेश हूँ, सुबह नाम से साथ दे रहा हूँ, साथ ही में आगे कहते हैं हेलो जी, गुड गुड मॉर्निंग रोशनी, एंजॉइंग द सॉन्ग्स और तू मेरी कहानी है, रॉकिंग वर्जन और दिल को छूने वाला भी जी, और एंजॉइंग द सॉन्ग्स एंड अकेले अभी, लेकिन रेडियो के साथ एनी एंड गोज आउट टू रिबेक।

0: पता नहीं अब आदित्य नारायण इज गोना गेट बैक टू एक्टिंग या फिर अभी वो रियलिटी शोज में जैसे होस्टिंग कर रहे हैं, कुछ गाने वाने गा रहे हैं। एनीवेज पिताजी उसको बस प्यार से कहते हैं, बेटा मैं गाता हूं तुम
1: सुनते रहो।
0: अपने बारे में उदित साहब ये कहते हैं कि पतला सा था लेकिन आवाज धुरंधर। अब ये सब तुम्हें इतनी छोटी सी ड्यूरेशन में कैसे बताऊं?

वैसे कभी सोचते नहीं कि एक छोटे से रूम में बैठकर कॉम्पोजिशंस करनी, लिरिक्स को बिठाना और फिर ये गाना बनाना किसी की जिंदगी में क्या असर लेकर आ सकता है. नहीं, keep on enjoying the songs, keep on humming along with the songs. Up next is going to be Retro Rhythm. मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी मिलते हैं.

0: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के ठीक 12 बजे हैं। संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था, नमस्कार।
1: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को अब नई दिशा देने की जरूरत है। विश्व बैंक का कहना है कि गन्ना, कपड़ा उद्योग और पर्यटन पर आधारित आर्थिक व्यवस्था अपनी सीमाओं तक पहुंच रही है। रिपोर्ट में ज्यादा आमदनी देने वाली सेवाओं और डिजिटल सेक्टर को आगे बढ़ाने की सिफारिश है। इन सुधारों से 2050 तक GDP में 7% की अतिरिक्त बढ़ोतरी और 37,000 से ज्यादा कुशल रोजगार पैदा हो सकते हैं। अब पानी की स्थिति, देश के जलाशय औसतन करीब 60% भरे हैं। पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 87% से ज्यादा था। मौवा कुआ 36% और लानी कुलिया सिर्फ 6% पर है। हालात पर गौर करने के लिए आज मंत्री पात्रिक आसियावादेन की अध्यक्षता में वाटर क्राइसिस कमेटी की बैठक लग रही है। कोटवाफे में कुछ परिवार करीब 15 साल से पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA और CB के अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया। अब समस्या के समाधान के लिए जरूरी कदमों पर काम हो रहा है। बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मेटा की टीम मॉरिशस में सरकार के साथ बातचीत में फर्जी खाते, ऑनलाइन उत्पीड़न यानी ऑनलाइन हैरेसमेंट, उम्र की जांच और ख्योल मोहिसे में कंटेंट की निगरानी पर चर्चा होगी। मंत्री अविनाश राम तोहल ने आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने और पुलिस के साथ बेहतर सहयोग पर जोर दिया। खेती में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों और कैंसर के बीच संभावित संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन, WHO और FAO के सहयोग से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति ने इस मुद्दे पर अपनी पहली बैठक लगाई। और सड़कों पर तेज आवाज करने के लिए गाड़ियों के एग्जॉस्ट में बदलाव

0: करने वालों पर कार्रवाई जारी है। जनवरी से अक्टूबर तक पुलिस ने 289 कॉन्ट्रावेंशंस जारी किए हैं। ऐसे बदलाव पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विदेश की खबरों में भारत में मतदाता सूची में बदलाव को लेकर विरोध तेज। विपक्षी दल और युवा संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी ने गड़बड़ी के आरोपों से इनकार किया है। फ्रांस में शिक्षा के लिए ज्यादा निवेश, पर्याप्त शिक्षकों और बेहतर स्कूल सुविधाओं की मांग को लेकर आज फिर बड़े छात्र प्रदर्शनों का आह्वान कर रही हैं। एक हफ्ते के आंदोलन में 190 छात्र घायल हुए हैं, जबकि जांच 5,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ब्रिटेन के आर ए एफ एफ से अमेरिकी सैन्य विमान वापस अमेरिका भेज दिए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पीछे कुछ धमकियों का जिक्र किया। पेंटागन ने विमानों की वापसी की पुष्टि की है, लेकिन धमकी किस तरह की थी ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मामजल जान गुडलैंड्स में 75 साल के कुसीराज होलकोरी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें ओमदेव के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल बुधवार 7 अक्टूबर को दिन के 10 बजे उनकी पत्नी शोभा होलकोरी के मकान ममजल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागूश गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: Retro Rhythm.
3: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: देखा, शुरुआत में ही आपको बोल दिया, छोड़ो सनम काहे का गम, मना लीजिएगा क्योंकि दुनिया एकदम खूबसूरत है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिन के 12:10। हेलो जी, कैसे हैं आप? सबको नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ट्यूजडे आफ्टरनून, सो अभी से लेकर 2 बजे तक 2 घंटों का सुनहरा सफर आपके साथ। इट्स योर रेट्रो रिदम टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन। और नोस्टाल्जिया लेन में आज हम विनोद खन्ना, द ग्रेट लेट विनोद खन्ना का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड 6 अक्टूबर 1946 में उनका जन्म हुआ था। बहुत सारी मूवीज में तो नहीं, लेकिन जितने मूवीज में काम किया, बीट सपोर्टिंग रोल्स या फिर लीड रोल्स में, उनके गाने, उन फिल्मों के गाने जबरदस्त ही रहे। एंड कई अवार्ड से सम्मानित भी किए गए। तो थोड़ा थोड़ा करके उनके बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में आप तक पहुंचाएंगे, उनके गाने भी आपको सुनाएंगे। देखा, अभी फोन भी बजना शुरू हो गया है। सो 5499 1294 9999 पर आपके मैसेजेस का इंतजार।

0: हमारा ही जमाना था।
1: है भाई
2: रेट्रो रिदम।
1: तो चले जमाना तो वो चला गया लेकिन वापस आ गए हैं और इन हसीन वादियों में ऐसे गाने एवरग्रीन होते हैं। 12:20 549-9-1294 पर थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस। और यहाँ पर विनोद खन्ना के इतने सारे फैंस हैं, थैंक यू सो मच। बनमिया से शीला जी, और आप भी उनके गाना सुनना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको सुनाएंगे ज़रूर। तो वो एक शानदार सितारे का सफ़र था, जी हाँ विनोद खन्ना। जैसे कि हमने कहा, हिंदी सिनेमा के आसमान पर कुछ ऐसे सितारे होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी, अपने अंदाज और अपनी ज़िंदगी के सफ़र से भी, जैसे कहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। और उनमें से एक शानदार और दिलकश सितारे थे विनोद खन्ना। तो 6 अक्टूबर 1946 में पेशावर में उनको उनका जन्म हुआ था, एंड 1968 में फिल्म मन का मीत के साथ उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी। और शुरुआत में ही उन्होंने विलन और सपोर्टिंग रोल्स निभाए, लेकिन उनकी पर्सनालिटी जो थी, उनकी गहरी आवाज़, क्या आवाज़ थी उनकी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी आँखों का असर इतना ज़बरदस्त था कि बहुत जल्द ही वो एक लीडिंग हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। देन वी हैड पूरब और पश्चिम मूवी देखी तो डेफिनेटली आपको याद आएगा, मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने, अचानक, ये जो फिल्में हैं उसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग और जो रेंज है वो सामने आया। ख़ास तौर पर मेरे अपने और अचानक में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो उनकी गहरी और संजीदा एक्टिंग को दिखाते हैं। तो अभी के लिए जितने भी फैंस हैं, ये गाना फ्रॉम द 90s उन पर पिक्चराइज थे, जैसे कि वो थे और मीनाक्षी शिशाद्री, याद आया आपको, यही है। नीतू आपके साथ, अगर कोई बात बिगड़ भी जाए होगी तो हम हैं ना आपके साथ ऑन 5499-1294। ज्योतिषा तो बिना गस्ते हैं, आशनी रेखा सुरेखा एंड माधव फैमिली के नाम, थैंक यू।

0: What a lovely गाना, हर शब्द में, हर पत्ते में ऐसा लगता है कि मिठास ही मिठास भरा हो। That was एक नजर फिल्म का गाना और पत्ते के पीछे इस गाने को शूट किया गया था। I mean Big B and of course उनकी प्यारी लवली पत्नी जया बच्चन। Thank you so much। 12:34 हुए हैं।
1: Retro Rhythm।
0: पर बात चल पड़ी है अबाउट द ग्रेट लेट विनोद खन्ना साहब। जब 1970s का वो दौर आया तो विनोद खन्ना बॉलीवुड के सबसे हैंडसम, कैरिस्मैटिक और पॉपुलर स्टार्स में से कहते हैं ना शुमार होने लगे। हाथ की सफाई, हेरा फेरी, खून पसीना, अकबर एंटनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी जैसे फिल्मों ने उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। हाथ की सफाई के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और उनके हर फिल्म के यहाँ पर गाने की फरमाइश आ रही है। कभी कभी एक फिल्म के दो गाने तो मैं ट्राई करती हूँ सबको, यानी कि सबको खुश करने के लिए। बस थोड़ा सा टाइम देते रहे, 5499-1294 पर भेजते रहे अपने मैसेजेस। एंड अमिताभ बच्चन के साथ वैसे कहते हैं कि उनकी जोड़ी लाइक हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंटनी, मुकद्दर का सिकंदर में खास तौर पर याद की जाती है। दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस अलग होने के बावजूद एक दूसरे को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करती थी। और फिर कुर्बानी 1980 की फिल्म में विनोद खन्ना, उनका स्टाइल, पर्सनालिटी और एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस ऑडियंस के दिलों पर छा गए। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि कंप्लेन स्क्रीन आइकन बन चुके थे। तो यहाँ पर नलिनी जी कहती हैं फ्रॉम त्यागोश, प्लीज नीतु प्लीज इम्तिहान का वो गाना चला दो। पिक्चराइज्ड वो तो थे ही, लेकिन जो फीमेल वाला गाना है रोज शाम, ये वाला

0: रेट्रो रिदम।
1: यहाँ पर तो रेडियो मस्ती पर गीतों का सावन है भाई। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294 और आपकी जो पसंद है, आपकी जो फरमाइश है काफी में A1। थैंक यू सो मच। गीता सीता भोलू राम फैमिली का शॉर मैंने की शतबिन अगस्सी है, साथ में है मोताबा से मीता, आपके नाम करुणा सीला एंड योर डियर वंस। थैंक यू मिस्टर दीपक साथ देने के लिए। कौदमास का पावे से आप है कौन, बेगम मोहरन एंड फैमिलीज। हेलो, कैसे हैं प्रकाशवती, आप हो फ्रॉम अब्रोड और हमेशा साथ निभाती रहती हैं।

जितने भी हमारे अपने हैं सात समुंदर पार, अ बिग हाई टू यू ऑल। संगीता, आप जब कोई बात, ये गाना हमने चला लिया, आपने सुना नहीं, मैं गा दूं? नहीं नहीं ये गाना आपने चला दिया माय डियर, लेकिन जो अगला गाना है आई एम श्योर ये भी आप पसंद करेंगे, जैसे कि रागिनी इस गीत को बहुत ही पसंद करती है।

0: डरना क्यों भाई, नीतू आपके साथ, रेडियो मस्ती आपके साथ, 12:52, ओरी बाबा टाइम इज फ्लीटिंग हाँ।
1: रेट्रो रिदम,
0: इतने सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ विनोद खन्ना, और जैसे कहा ना एक ही मूवी के दो दो तीन तीन फरमाइशें आ रही हैं, लाइक लहू के दो रंग फिल्म से लिया गया, इम्तिहान फिल्म से लिया गया, हम कोशिश कर। सारा बानू गुड आफ्टरनून, कैसे है प्यारी सुरमीला, गाने सुनकर अच्छा लग रहा है, एंकरेजमेंट जैसे कि आप कहते हैं फॉर अ ट्यूजडे, थैंक यू। आप हो फ्रॉम इटली, सो ये गाना अगला गाना जो है आपके नाम पूरे परिवार के लिए। प्यारी सी रेखा पोंबोजो से हैं, कहती हैं पोंबोजो से मेरे पूरे परिवार, खास तो जो फ्रेंड्स नौशीन कल्याणी।

इंदिरा शालिनी अभी काम पर हैं, सो सबको बों को गाजबिश करेंगे। डेफिनेटली ये अगला गाना आपके नाम भी चलाते हैं। मिस्टर डेव, आप हो फ्रॉम पेरिस, इम्तिहान का वो ही गाना, रुक जाना नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे।

लवली गाना, इंस्पिरेशन वाला गाना जैसे कहते हैं। लाइफ गोज ऑन और हमेशा चलते रहना चाहिए, भले ही जो कुछ हो जाए, गिरेंगे फिर से उठना, पर चलते रहना।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: बारह बजकर 56 मिनट 1 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और आपकी फरमाइश आपके डेडिकेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे अप टिल 2 PM।

0: एक बज चुका है आई सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशीता नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतू शाश्वताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी सड़कों पर हाइब्रिड गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आम गाड़ियों से अलग हाइब्रिड गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है जो हाई वोल्टेज बैटरी से चलती है। इन गाड़ियों को सही तरीके से चलाने और उनकी अच्छी हालत बनाए रखने के लिए विशेष रख रखाव की ज़रूरत होती है। इस पर हम हमारे 6 बजे के समाचार में एक विशेष रिपोर्ट के साथ आएंगी। मॉरिशस में मधुमेह के खिलाफ एक नई पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य इस बीमारी से बचाव करना और इससे होने वाली जटिलताओं को कम करना है। गैर सरकारी संगठन ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नाम की संस्था की इस पहल में समुदायों के साथ मिलकर काम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। संगठन का लक्ष्य 2035 तक अनियंत्रित मधुमेह के मामलों में 5% की कमी लाना है। इसके अलावा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए शोध भी किए जाएंगे ताकि उनकी ज़रूरत के अनुसार उचित कदम उठाए जा सके। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कल सोमवार 5 अक्टूबर को एवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान संस्था की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। फिल्म निर्माण के 40 साल देश की सेवा के 40 साल MFDC की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर सिनेमा से जुड़ी कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों में सिनेमा वीक प्रमुख है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और सेना के छात्रों के लिए कम कीमत पर टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। अलग अलग विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा मॉरिशस में फिल्माई गई फिल्मों के विशेष प्रदर्शन और सिनेमा दौली विलाज यानी गाँव में सिनेमा परियोजना भी आयोजित की जाएगी। लेकिन इन सभी गतिविधियों में सबसे प्रमुख है नेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2026। ये प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है और इसमें 3 श्रेणियां होंगी, पारंपरिक फिल्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डॉक्यूमेंटरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद अब वे आकाशवाणी भवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने से रोक दिया। नेता वहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की

0: मांग करनी जा रही थी। ये मांग SIO यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विवाद को लेकर की जा रही है। करीब एक साल से भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त पर देश की मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन को लेकर लगातार राजनीतिक दबाव बना हुआ है। इस प्रक्रिया को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट और अपात्र नामों की को घटाना और निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाना और ये सुनिश्चित करना है कि योग्य मतदाताओं के नाम शामिल रहें। हालांकि विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया से योग्य मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। ये विरोध प्रदर्शन SIO प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक विवाद और मतदाता पंजीकरण फॉर्म में कथित तौर पर बिना अनुमति बदलाव किए जाने के आरोपों के बीच हो रहा है। और भारत में ही रहते हैं, भारत में मानसून खत्म चुका है और बारिश की कमी का असर अब देश के जलाशयों पर दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र में सरकार ने 16 अक्टूबर से शहरी और ग्रामीण इलाकों में कम से कम 10% पानी की कटौती करने की घोषणा की है। सरकार ने इसका कारण मानसून के दौरान कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति का बढ़ना खतरा बताया है। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात में बांधों में पानी का भंडारण असमान बना हुआ है। दूसरी ओर कर्नाटक ने सूखे से राहत के लिए हजारों करोड़ रुपए की मांग की है, क्योंकि किसान और स्थानीय समुदाय पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musty.

ऐसे कलाकार को बिना चाहे कैसे रह सकते हैं। दैट वॉज विनोद खन्ना साहब, कुर्बानी फिल्म से लिया गया। थैंक यू सो मच। 1:11 एंड 5:49, 9:12, 9:04 पर आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, और भी गाने हैं पिक्चराइज्ड ऑन विनोद खन्ना, लेकिन और भी ऐसे गाने हैं जो आपके दिल के करीब हैं। सो 5:49, 9:12, 9:04 पर वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून। वापस आपको ले चलते हैं टू द 60s। हमराज महेंद्र कपूर की आवाज में। आप अगर साथ देने का वादा करें तो बस आपको ऐसी जन्नत में ले चलेंगे, हम भी चलेंगे साथ साथ, क्योंकि ऐसे गाने वापस उन्हीं यादों में खो जाने के लिए एकदम तैयार हैं। टिल 2 PM

0: कभी 80s कभी 70s कभी 90s दैट वाज खिलाड़ियों का खिलाड़ी कुमार सानू साधना सरगम की आवाजें. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस. रुकैया फ्रॉम रेजवी, आप तो हमारी पड़ोसन हैं, बस अभी स्टो में हैं, तो बों कुराज टू यू. शायद कोई भी और होगा आपके साथ, उनको भी बों कुराज. 5499 1294 पर चलिए, बातें तो और होती रहेंगी, लेकिन विनोद खन्ना के बारे में और जानना चाहेंगे.
1: रेट्रो रिदम.
0: तो जब विनोद खन्ना की बात ही चल पड़ी है, उनकी जिंदगी जैसे कहती है सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं थी. उनके करियर के पीक पर लाइक 1982 के आस पड़ोस उन्होंने फिल्मी दुनिया से एक ब्रेक लिया और स्पिरिचुअल पाथ की तरफ मुड़ गए. और ऐसे कुछ सालों के बाद 1987 के आसपास वो सिनेमा में वापस आए और एक नए अंदाज के साथ अपने दूसरे इनिंग्स भी शुरू की. और दूसरे इनिंग्स मतलब कि इंसाफ, सत्यमेव जयते, जुर्म, दयावान, चांदनी, लेकिन और कई अन्य फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का एक मैच्योर रूप दिखाया. बाद के वर्षों में वो कैरेक्टर रोल्स में भी उतने ही प्रभावशाली रहे, लाइक वॉन्टेड, दबंग, दबंग 2 जैसे फिल्मों में उनकी डिग्निफाइड प्रेजेंस को ऑडियंस ने खूब ही पसंद किया. वैसे फिल्मों के साथ साथ विनोद खन्ना ने पब्लिक लाइफ में भी कदम रखा. 1997 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और उन्होंने केंद्रीय सरकार में भी मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी संभाली. इस तरह उनकी जिंदगी सिनेमा से लेकर पब्लिक सर्विस तक एक बहुत ही अलग और प्रेरणादायक सफर रही. यहाँ पर मैं सफर की बात देख रही हूँ तो लिस्ट काफी लंबी है यहाँ पर. बहुत पहले इस गीत की फरमाइश आई थी फ्रॉम द मूवी लहू के दो रंग. तो बृंदा एंड विकास, ये आपके नाम.

अब हम क्या ही कहे बाबू अनतवा जी, ये गाना आपके नाम। ये उपकार फिल्म से लिया गया वही सदाबहार गाना पिक्चराइज ऑन लेट मनोज कुमार साहब। तो बस गानों की फरमाइश यहाँ पर ऑन 5499129 4 1:32 हुए हैं।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: दीवानों से मत पूछो क्या बात है भाई, बस दीवाने को पता है कि जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है। जो चोट लगती है ना दिल को, उसको सहलाने में टाइम वक्त लगता है। डेफिनेटली 5499 1294 पर

आपके लिए ये गाना चलाती है, दिल में हो तुम आंखों में तुम, बस इस रेडियो मस्ती की लहरों पर भी आप ही हो। नमस्कार नीतू, कैसे है? बिल्कुल ठीक ठाक। विनोद खन्ना के गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। ओके, आप है सुनीता सीताराम, मामा मोहिनी, गिरीश, गणेश आपकी बहन है, सुरेखा, हुलाश, शोहन, रंजाया, सब परिवार फ्लैग से, जितने भी लोग इस समय साथ निभा रही है, स्पेशली टू द फैंस ऑफ विनोद खन्ना।

अगर किसी को भी मौका मिलता ना उस जमाने में वापस जाने के लिए तो डेफिनेटली हर कोई जाना चाह रहा होगा। एक बजकर 42 मिनट, थैंक यू सो मच इन खूबसूरत गानों की फरमाइश के लिए। और यहाँ पर सुरेखा कैथको कोको से साथ निभाती हुई कहती है, प्लीज नीतू नेक्स्ट गाना जो है मेरे लिए चला दो। कौन सी फिल्म है भाई? ये है फिल्म परवरिश से लिया गया, मोहम्मद रफी साथ में किशोर कुमार एंड शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

54 एंड जाते जाते ये गाना आपके नाम शाम सेबास्टोपोल आपके पूरे परिवार के लिए एंड मिसेस सुनीता लोलचंद आपका आज बर्थडे है सो सभी लोलचंद परिवार की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं चुने जाते हैं आपको एक और खूबसूरत गाना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लिया गया प्यार जिंदगी है तो इस जिंदगी को आप बड़ी प्यार से जिएगा शेयर लव एंड हैप्पीनेस और हमारी बात थोड़ी देर में परी आ जाएंगी बॉम्बे टॉकीज लेकर अब मुलाकात होगी थर्सडे मॉर्निंग को हाँ 5 बजे आपको उठाने जगाने के लिए चलते चलते ये गाना गुजाचू श्री सुदामा दुबे गिरधारी जी आज इनका जन्मदिन है बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एंड बॉलो के सभी गाँव वासियों की तरफ से चले दादाजी को हार्दिक शुभकामनाएं एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स बाय बाय

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: PM. सिंधिया संक्षिप्त समाचार आपसे आशीता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस में मधुमेह के खिलाफ एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी से बचाव करना और इससे होने वाली जटिलताओं को कम करना है। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नाम की गैर सरकारी संस्था की इस पहल में समुदायों के साथ मिलकर काम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। संगठन का लक्ष्य 2035 तक अनियंत्रित मधुमेह के मामलों में 5% की कमी लाना है। इसके अलावा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए शोध भी किए जाएंगे, ताकि उनकी ज़रूरत के अनुसार उचित कदम उठाए जा सकें। नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए परिवारों और स्थानीय लोगों को साथ जोड़ना, यही उस अभियान का उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत कल सोमवार शाम गजिदाओं सवालीजी में मशाल के साथ मार्च के दौरान की गई। इस मौके पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी मौजूद थी। गैर सरकारी संस्था अनुला सामुदायिक केंद्र में 10 सप्ताह तक हर सप्ताह 2 जागरूकता सत्र आयोजित करेगी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सत्रों को अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को जागरूक किया जा सके और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ा जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबेरिया में प्लेग पर शोध करने वाले एक अनुसंधान संस्थान के एक प्रयोगशाला कर्मचारी की बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। परिस्थितियां स्पष्ट नहीं की गई हैं। इसके बाद अधिकारियों ने दर्जनों लोगों को क्वारंटीन में रखा। रूस की स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी के प्रमुख भी इरकुत्सक क्षेत्र पहुंचे हैं। इस मौत के बाद सोशल मीडिया पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ी, लेकिन अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। और उधर भारत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद अब वे आकाशवाणी भवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने से रोक दिया है। नेता वहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने जा रहे थे। ये मांग SIR विवाद को लेकर की जा रही है। करीब एक साल से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पर देश की मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन को लेकर लगातार राजनीतिक दबाव बना हुआ है। इस प्रक्रिया को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। आपको हम याद दिला देते हैं कि निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाना और ये सुनिश्चित करना है कि योग्य मतदाताओं के नाम शामिल रहें। हालांकि विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया से योग्य मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। ये विरोध प्रदर्शन SIR प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक विवाद और मतदाता पंजीकरण फॉर्म में कथित तौर पर बिना अनुमति

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, 2:08 हो चुके हैं and with this beautiful track, it's time to welcome you all, यानी कि हमारे सभी listeners जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं on RM2 Radio Masti. Yes, it's time for your Bombay Talkies. मैं हूँ परी आपके साथ and उम्मीद करते हैं that आज का ये Tuesday, it's a beautiful Tuesday for everyone जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Good wishes, good music, ये बस हम आप तक पहुँचा रहे हैं and ये जो खूबसूरत गाना था that was in the voice of Fahim Abdullah. Yes, the singer जिन्होंने गाया सैयारा and then अब इस

खूबसूरत गीत के साथ वो लौट कर आए हैं। पहला प्यार दूसरी बार, यस, ये फिल्म का टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि स्कूल डेज में प्यार होता है, उसके बाद सब दोस्त सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद रीयूनियन में मुलाकात होती है, और वो जो पहला प्यार था दूसरी बार भी होता है सेम इंसान के साथ। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोरी। और चलिए दोस्तों, ऐसी ही कहानियां हम आपको सुनाने वाले हैं, ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ, बी टाउन की अपडेट्स एंड सम लेटेस्ट ट्रैक्स। वी ऑल्सो हैव हर डियर देवशिका जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं। तो चलिए अगला गाना आपके नाम। आज तो कुछ काम करने निकली हैं आप, लेकिन आई एम श्योर गानों के साथ आपके मूड को हम सेट रखेंगे। सो विशिंग यू अ वंडरफुल ट्यूसडे स्वीट हार्ट, और ऐसे ही साथ देते रहिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती। And this one goes out for all the beautiful ladies जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं afternoon time, काम करते हुए या फिर work from home, shopping कर रहे हैं, या जो भी आपके plans हैं, drive कर रहे हैं या पर कहीं पर घूमने निकले हैं। कनेक्शन तो आपका और हमारा बना हुआ है विद दी सॉन्ग्स जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सो स्पेशली फॉर ऑल आवर वंडरफुल लेडीज जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, दिस वन गोज आउट फॉर यू।

0: Your number one Bollywood station.
1: Bombay Talkies. Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: और चलिए दोस्तों बात करते हैं हम आदित्य धार और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ यामी गौतम की। आजकल चर्चाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश में फाइनली सेटल होने जा रहे हैं और अब इन अफवाहों पर फाइनली फुल स्टॉप लगा दिया है उनकी टीम ने। बीते दिनों से डायरेक्टर आदित्य धार और यामी गौतम के हिमाचल प्रदेश में स्थायी रूप से बसने की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रही थी, मगर आदित्य की टीम ने इन अफवाहों को बिल्कुल साफ कर दिया है। और सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से आदित्य धार यामी गौतम के मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश में बसने की जो खबरें हैं वो काफ़ी जोरों शोरों से चल रही थी, मगर आदित्य धार की टीम के एक सदस्य ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये खबर बिल्कुल सच नहीं है और पता नहीं ये खबरें कौन भेज रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया से जुड़े कुछ रिपोर्ट्स में आदित्य धार और यामी हिमाचल प्रदेश में हमेशा के लिए सेटल होने की जो बात है वो काफ़ी राउंड कर रही है। रिपोर्ट में यामी के राज्य और उनके जो लोकल उनका जो गांव है वहां पर उनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है और इसी के चलते बताया जा रहा था कि उन्होंने वहां पर एक लैंड खरीदा है एंड फाइनली अब ये कपल मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए हिमाचल प्रदेश में सेटल होने जा रहा है। सो यहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि फॉर नाउ द कपल इज वेरी मच इन मुंबई और वो वहीं पर रहने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यामी और आदित्य ने हिमाचल में सादगी भरा हिमाचली जीवन जीने का फैसला किया, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। कपल को शांत माहौल और नेचर के करीब रहना पसंद है। आदित्य और आदित्य ने 2021 में बिल्कुल ट्रेडिशनल हिमाचली तौर पर शादी की थी और ये जो बातें हैं अब अफवाह बनकर काफ़ी चर्चाओं में चल रही है कि क्या ये जो पावर कपल है फाइनली मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश में सेटल होने वाला है, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है उनकी टीम ने।

0: सो अभी के लिए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आदित्य धार आफ्टर धुरंधर कुछ खास लेकर आने वाले हैं. एंड यामी गौतम इज ऑल सेट टू रॉक द स्क्रीन उनकी नई फिल्म यानी कि अपकमिंग फिल्म नई नवेली के साथ जो दिस नवरात्रि रिलीज होने वाली है. यस ऑन 16th of October हम देख पाएंगे इस फिल्म को उनकी लेटेस्ट रिलीज नई नवेली. और चलिए दोस्तों बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी के लिए यहां पर ऐसे ही कुछ गाने हैं जो कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. एंड अभी के लिए जो अगला गाना है फ्रॉम द अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर जिसमें नजर आने वाले हैं आयुष्मान खुराना और उनके साथ सारा अली खान पाकिस्तानी एजेंट जो इंडिया आता है और उसके बाद उनकी याददाश्त भूल जाती है. सॉरी यहाँ पर हमारा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया. और चलिए आपको बता दें दैट ये जो फिल्म है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर कहानी है एक पाकिस्तानी स्पाई की जो आते हैं इंडिया और उसके बाद इंडिया आकर वो भूल जाते हैं कि वो किस देश से है. यानी कि देशभक्ति तो है लेकिन किस देश के लिए देशभक्ति है ये वो भूल जाते हैं. सो वेल फ्रॉम द फिल्म उड़ता तीर वी हैव दिस गाना फॉर ऑल द लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं. एंजॉय दिस वन.
1: पुतनी का भागने न पाए.

0: कुछ समझ में नहीं आया।
1: फिर से सुन।
2: भाई निकल सीधा जाके भाई पुरे भाई निकल सीधा जाके भाई पुरे थोड़ा आगे भाई निकल भाई निकल सीधा जाके भाई निकल भाई निकल भाई निकल भाई।
3: RM2
4: रेडियो मस्ती।
3: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
4: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: चलिए दोस्तों, फिल्म काला हिरन की रिलीज को लेकर सलमान खान ने कोर्ट में केस किया है और वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने बॉलीवुड के दबंग खान के केस पर रोक लगाने की मांग अदालत से करते हुए याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज

0: जय मंगलवार को विवादित फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी के मेकर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया है। और आपको बता दें दैट एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स की याचिका में सलमान खान की तरफ से फिल्म के रिलीज के खिलाफ दायर केस पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने सलमान खान से इस मामले पर जवाब मांगा। कथित तौर पर यह विवादित फिल्म सलमान खान के साल 1998 में काले हिरन यानी कि ब्लैक बग के शिकार मामले से प्रेरित यानी कि इंस्पायर है। निर्माता ने याचिका में दलील की है कि सलमान खान ने पहले ही एक केस दायर किया हुआ है और इसमें भी काफी हद तक यही विवाद चल रहा है। मेकर्स की अर्जी जस्टिस अनूप जयराम भंभानी के सामने पेश की गई और निर्माता अमित जानी ने वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में चल रहे एक पुराने मामले में भी ऐसी ही राहत मांगी गई थी और तर्क दिया गया था कि जब तक पुराने मामले का फैसला नहीं हो जाता तब तक मौजूदा कार्रवाई पर रोक लगा दी जानी चाहिए। निर्माता के वकील ने कहा कि उन्होंने यानी कि सलमान खान ने पिछले मुकदमे में भी बिल्कुल ऐसी ही मांग रखी थी। वहीं सलमान खान की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट रवि प्रकाश ने कहा कि ये याचिका पर वो जवाब जल्द दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अर्जी के जरिए मांगी जा रही राहत के बारे में साफ जानकारी मांगी और पूछा कि क्या ये मुकदमा पर्सनालिटी राइट्स यानी कि व्यक्तित्व अधिकारों के लिए था। इस पर एडवोकेट रवि प्रकाश ने बताया कि सलमान खान का मूल मुकदमा उनकी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ा था और कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश भी दिया था। उन्होंने आगे कहा कि इसके बारे में वो और जानकारी देकर जाएंगे और साथ ही साथ इस पर जवाब भी वो कोर्ट को पहुंचाएंगे। साथ ही सलमान खान के पक्ष के अनुसार एक्टर की जिंदगी की एक घटना पर ये फिल्म आधारित है और वो नहीं चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज हो। तो चलिए अभी के लिए तो चर्चाएं काफी स्ट्रांग है कि क्या ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं, लेकिन अभी से ही कह सकते हैं अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो इस फिल्म को बहुत सारी पब्लिसिटी वैसे ही मिल गई है। सो लेट्स वेट एंड वॉच के कोर्ट का फाइनल फैसला क्या होता है।
1: RM2, Radio Masti.

So, well, friends, that's a beautiful track. Madhur Sharma ki awaz and Mirzapur, the movie. Yes, usi film ka ye gana aap sabhi ke liye. Jis waqt saath de rahe hain, so we have Davison from Lal Mati, hamara saath de rahe hain. Ye gana aapke naam. Kavita ji, aap bhi hamara saath de rahe hain on RM2 Radio Masti. So, warm welcome aapka aur ye track hum dedicate kar rahe hain aapke naam. चलिए यहाँ पर सभी गंगाराम परिवार आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुरेखा जी कह रही हैं गाना हो जाए फॉर स्वीट फैमिली एंड एंजॉयिंग द ट्रैक्स और हमेशा कनेक्टेड रहते हैं रेडियो मस्ती के साथ. सो अच्छा लगा आपका ये स्वीट मैसेज पाकर और आज फैमिली गेट टुगेदर भी है. सो शाम तक आपका पूरा परिवार आने वाला है घर पर और आप उसी तैयारियों में लगी हुई हैं. सो वेल परिवार के साथ मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज अभी के लिए गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम. साथ ही यहाँ पर सभी लोचन परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो आई डू होप दैट आप भी यहाँ पर को एंजॉय कर रहे हैं. वी हैव दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना आप सभी के नाम यानी कि फॉर ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

So, well, Rajshri Films लेकर आ रहे हैं एक और रोमांटिक क्लासिक जिसमें नजर आने वाली हैं शर्वरी वाघ एंड आयुष्मान खुराना. सो उसी फिल्म का ये सुपर रोमांटिक गाना आपके लिए, ये प्रेम मूल्या. और ये जो गाना है आप सभी लिसनर्स के नाम, एंड साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों. ये है निहाल तोरो एंड श्रेया घोषाल की आवाज़ों में द टाइटल ट्रैक, ये प्रेम मूल्या. सो एन्जॉय दिस वन. एक और सुपर रोमांटिक मूवी लेकर आ रही हैं राजश्री फिल्म्स. देखना ये होगा कि ये फिल्म लोगों के दिलों में कितनी उतरती है. तभी के लिए ये गाना आप सभी के लिए.

प्यारी सी आशा जी हमारा साथ दे रही हैं फ्रॉम एबन और कहती है दैट एक गाना कैसे मूड चेंज कर सकता है. वैसे आपका मूड सेट हो गया है सासों की माला गाना सुनने के बाद एंड आई एम श्योर दैट ऐसे ही कुछ ट्रैक्स चलते रहेंगे जो आपके इस मूड को सेट रखेंगे. सो वेल आशा जी सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल ट्यूसडे अहेड. काम करते हुए ही सही गानों को सुन रही हैं आप. सो हैव अ वंडरफुल टाइम. ये है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती और इसी ट्रैक के साथ बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. परी का साथ है दिन के 4 बजे तक.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका के कारोबारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों व्यापार और निवेश से जुड़े एक फोरम में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस में है। ये पहल मॉरिशस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी MCCI ने केप टाउन की व्यापार निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एजेंसी वेस्ट्रो के सहयोग से आयोजित की है। इस बैठक का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका की विशेषज्ञता और क्षमताओं को सामने लाना तथा क्षेत्र में कारोबार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है। इस फोरम की शुरुआत आज सुबह हुई। COP31 से पहले मॉरिशस और प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश समुद्र के बढ़ते जलस्तर के खतरे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आज सुबह फिजी में आयोजित प्री कॉप में नेताओं के पूर्ण सत्र के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करना और धरती के बढ़ते तापमान से होने वाले नुकसान को कम करना जरूरी है। मॉरिशस में 2024 के दौरान महिलाओं में कैंसर के 1,891 मामलों की पहचान की गई। इनमें से 37.5% मामले स्तन कैंसर के थे। इलाज के साथ साथ मरीजों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहयोग देना भी बेहद जरूरी है। गैर सरकारी संस्था लिंक टू लाइफ मरीजों को ये सहयोग प्रदान करती है। पिंक अक्टूबर के इस महीने में संस्था लोगों को स्तन कैंसर की समय रहते जाँच कराने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। और अफ्रीका के आर्थिक भविष्य को लेकर कर व्यवस्था, निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हुई। ये चर्चा डिलॉयट की टैक्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के दौरान हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि कर व्यवस्था में सुधार से अफ्रीकी महाद्वीप की आर्थिक वृद्धि को तेज किया जा सकता है। वहीं मॉरिशस का लक्ष्य खुद को एक मजबूत वित्तीय केंद्र और नई तकनीकों, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में और मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के साइबेरिया क्षेत्र के इरकुस्क में प्लेग से 28 वर्षीय एक प्रयोगशाला टेक्नीशियन की मौत के बाद सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन किया गया है और कम से कम 5 अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब टूटने के बाद वह निमोनिक प्लेग से संक्रमित हुई थी। इस टेक्नीशियन के संपर्क में आए 200 से अधिक लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। इरकुस्क में सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी रद्द किए जाने की खबर है। निमोनिक प्लेग क्या है? यह प्लेग एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित पिसुओं के काटने या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से इंसानों में फैल सकती है। निमोनिक प्लेग, जिसे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला प्लेग भी कहा जाता है, इसका सबसे खतरनाक रूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसके लक्षण संक्रमण के बाद बहुत तेजी से सामने आ सकते हैं। कभी कभी 24 घंटे के भीतर इसमें सांस लेने में तकलीफ और तेज खांसी जैसे गंभीर लक्षण शामिल हैं। खांसी के साथ खून मिला बलगम भी आ सकता है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on MBC Play and MBC.mu. More music in the mix.
3: आज आजादी है।
4: Bombay Talkies, Radio Musti.
5: Radio Musti.

It's a beautiful track, Rangi Yara, और इसी गाने के साथ warm welcome दोस्तों, 3:10 हो रहे हैं परी का साथ, and it's time for your Bombay Talkies. पी डाउन की खबरें आप तक तो पहुंचाती हैं और साथ ही साथ आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर. So this one goes out हमारे सभी listeners के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. Specially goes out for you, रोशनी. साथ देने के लिए शुक्रिया. Wishing you a wonderful afternoon and सभी listeners जो इस वक्त हमारे साथ connected हैं. I do hope that ये जो Tuesday afternoon है आपकी अच्छे से बीत रही है. वैसे कुछ लोग तो बोल रहे हैं काम पर है और वही routine daily वाला, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि daily routine में भी वो खुशी आप ढूंढ सकते हैं. और अभी के लिए तो कुछ गाने भी ऐसे जो आपको खुशी पहुँचा सके. लेटेस्ट ट्रैक्स है, कुछ ट्रैक्स जो शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो, बिकॉज जो गाना शायद आपके दिल के करीब है, आपका फेवरेट गाना है, उसका भी तो टाइम होगा जिससे आपने कभी पहली बार सुना होगा. सो यू नेवर नो दैट ये गाना भी बन सकता है आपका स्पेशल स्पेशल ट्रैक. सो कीप एंजॉइंग मैसेजेस, डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों 3:20 बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़। अभी के लिए तो आफ्टरनून टाइम है और यहां पर एक्टर कुणाल खेमू ने अपनी रीसेंट इंटरव्यू में वाइब और हनुमान अंश को लेकर काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने फिल्म बनाने की सोच पर भी काफ़ी कुछ बातें की और एक्टर और डायरेक्टर कुणाल खेमू की फिल्म वाइब का प्रदर्शन सिनेमाघरों में संतोषजनक नहीं रहा। एक बातचीत के दौरान एक्टर ने पैन इंडिया टैग के बारे में बात की, इसके साथ ही हनुमान अंश के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ कहा। कुणाल खेमू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि विशाल चतुर्वेदी द्वारा डायरेक्टेड हनुमान अंश उन्हें काफी अच्छी लगी। महज 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और इस पर एक्टर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ अखिल भारतीय फिल्म है, ये अखिल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है और यस इट्स एन इंटरनेशनल फिल्म नाउ और दुनिया भर में हर कोई इस फिल्म को देख रहा है। उन्होंने आगे अपनी बात समझाते हुए कहा कि किसी फिल्म को पैन इंडिया बनाने का कोई तय फॉर्मूला नहीं होता। उनके अनुसार ये टैग काफी हद तक एक व्यापारिक यानी कि बिजनेस के लिए यूज किए जाने वाला शब्द है जो इस बात पर निर्भर करता है कि फिल्म अलग अलग क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन करती है। लेकिन अभी के लिए सुपर इम्प्रेस्ड जैसे हनुमान अंश काम कर रही है और जैसे हर कोई इसे पसंद कर रहा है और इतने सारे जो रिव्यूज आ रहे हैं इस फिल्म को लेकर, यानी कि 2 करोड़ में बनी फिल्म 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है और यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ उम्मीद लगाई जाती है और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। सो अभी के लिए तो कुणाल खेमू ने भी अपनी राय दी है, उनकी फिल्म फ्लॉप भले ही हुई है लेकिन ही स्टिल वेरी इंप्रेस्ड विद हनुमान अंश। तो चलिए दोस्तों हनुमान अंश का ये गाना आप सभी के लिए जो साथ दे रहे हैं ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती वी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपके मूड को सेट करते रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अपसेट हैं या फिर काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, आई एम श्योर ये गाना आपको बिल्कुल रिलैक्स करने वाला है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक, लेट्स एंजॉय दिस वन। मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

तो चलिए दोस्तों, इट्स 3:39। सोनाक्षी सिन्हा और उनके हस्बैंड जहीर इकबाल जल्द ही पर्दे पर साथ काम करते नजर आएंगे। फिल्म का नाम है तू है मेरी किरण। ये एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। जहीर इकबाल एक जुनूनी आशिक के रोल में नजर आएंगे और फिल्म का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। तो बता दें आपको, फिल्म तू है मेरी किरण का ट्रेलर

0: साक्षी से कहते हैं, तुम जैसी लड़की के लिए मुझ जैसे लड़के को प्यार करना बहुत मुश्किल है। दोनों में जान पहचान होती है, बातें होती है। एक दिन जहीर का किरदार प्रपोज कर देता है और कहता है आई लव यू किरण। सोनाक्षी का किरदार चौंकता है और हद में रहने को कहता है। जहीर का जवाब होता है कि अगर ये एक तरफा प्यार हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा किरण। सो अब आगे क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन रियल लाइफ कपल अब रियल लाइफ में भी नजर आने वाले हैं और 23 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है सिनेमाघरों में। अंदाज से तू है मेरी किरण।
1: Music all day long.
2: Radio Masti, sunte raho.
0: चलिए यहाँ पर खूबसूरत गाने चलते रहेंगे, आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस भी हम वेलकम कर रहे हैं ऑन 5499-1294। यहाँ पर गोविंद रघुनंदन साथ दे रहे हैं आप वाकवा से और आज आपकी मम्मी का बर्थडे है। शी इज इन हेवन एंड ऑफकोर्स पूरा परिवार उन्हें विश कर रहा है वेरी हैप्पी बर्थडे। सो विशेज कमिंग फ्रॉम ऑल रघुनंदन गोविंद एंड कार्पन एंड अपारू फैमिलीज। गुड विशेज हम तो पहुँचा रहे हैं आप तक और शी इज इन हेवन नाउ बट योर एंजल ऑलवेज। सो गुड गुड टू दादी और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294।

मोना का इसे हमारा साथ दे रही हैं. सो वेल, गाना होगा इन दोनों के नाम एंड फॉर ऑल द लिसनर्स. इक्वली गोज आउट फॉर जेसी किसना सामी, अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. फ्रॉम मेलानिया एंड ऑल फैमिलीज, ऑल फ्रेंड्स सेपिया से उनके लिए लेकर आए हैं स्पेशल विशेज. तो चलिए दोस्तों, इस नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आ रही है गिनिशा लेकर योर अवतार वाइव्स. मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज.

0: रोकने के लिए परिवारों और स्थानीय लोगों को साथ जोड़ना यही उस अभियान का उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत कल सोमवार शाम गजीदौस वाली जी में मशाल के साथ मार्च के दौरान की गई। इस मौके पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी मौजूद थी। गैर सरकारी संस्था अनुला सामुदायिक केंद्र में 10 सप्ताह तक हर सप्ताह 2 जागरूकता सत्र आयोजित करेगी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सत्रों को अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को जागरूक किया जा सके और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ा जा सके। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कल सोमवार 5 अक्टूबर को ईबेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान संस्था की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। फिल्म निर्माण के 40 साल, देश की सेवा के 40 साल, MFDC की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर सिनेमा से जुड़ी कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों में सिनेमा वीक प्रमुख है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और सेना के छात्रों के लिए एक कम कीमत पर टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। अलग अलग विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा मॉरिशस में फिल्माई गई फिल्मों के विशेष प्रदर्शन और सिनेमा दौली विलाज यानी गांवों में सिनेमा परियोजना भी आयोजित की जाएगी। लेकिन इन सभी गतिविधियों में सबसे प्रमुख नेशनल शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन 2026 है। ये प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है और इस समय 3 श्रेणियाँ होंगी, पारंपरिक फिल्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डॉक्यूमेंटेरी। और मॉरिशस में मधुमेह के खिलाफ एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी से बचाव करना और इससे होने वाली जटिलताओं को कम करना है। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नाम की गैर सरकारी संस्था की इस पहल में समुदायों के साथ मिलकर काम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। संगठन का लक्ष्य 2035 तक अनियंत्रित मधुमेह के मामलों में 5% की कमी लाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मॉनसून खत्म हो चुका है और बारिश की कमी का असर अब प्रदेश के जलाशयों पर दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र में सरकार ने 16 अक्टूबर से शहरी और ग्रामीण इलाकों में कम से कम 10% पानी की कटौती करने की घोषणा की है। सरकार ने इसका कारण मॉनसून के दौरान कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति का बढ़ना खतरा बताया है। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात में बांधों में पानी का भंडारण असमान बना हुआ है। दूसरी ओर कर्नाटक ने सूखे से राहत के लिए हजारों करोड़ रुपए की मांग की है, क्योंकि किसान और स्थानीय समुदाय पानी की कमी का सामना कर रही है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

के लिए अमिताभ बच्चन की आवाज में जी हाँ बागबान मूवी से लिया गया। चली चली कहाँ जा रहे हो आप? अरे जाने का वक्त नहीं है, हाँ आप घर जा रहे हो लेकिन हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे ऑन आवरम टू रेडियो मस्ती। वी हैव गॉट यू द बेस्ट म्यूजिक सिलेक्शन फॉर दिस ब्यूटीफुल आफ्टरनून। और आज ऑलरेडी ट्यूजडे 6 अक्टूबर 2026 है मेरी जान, सो विशिंग ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज टुडे अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन रेडियो मस्ती एंड ऑल दोज आर सेलिब्रेटिंग सम लवली ओकेजंस एंजॉय टू द मैक्स इट्स योर डे। एंड ऑफ कोर्स माय डियर लवली हियर लिसनर्स, जितने भी ऑलरेडी ड्राइविंग कर रहे हैं राइट नाउ एंड लिसनिंग टू अस, हम तो कहते हैं कि अपने जो गाड़ी का शीशा है ना थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ठंडी ठंडी हवा आएगी, अच्छे अच्छे गाने आप सुनेंगे। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर दिस आफ्टरनून, जस्ट मेक यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो चलिए जी, जो बस में बैठे हैं, हैव अ सेफ ट्रिप बैक होम। अभी हाय गोज़ टू कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स जो साथ दे रहे हैं। एंड चलिए जी, ऑन आवर टू रेडियो मस्ती की निशा लेकर आई है दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इन सुनो निगम श्रेया घोषल की आवाजों में।

Well guys, I really hope that you are really loving these beautiful and lovely गानों का selection जो लेकर आई हैं आप लोगों के लिए. And it's all happening on Radio Masti in your rough tar vibes and that's your filmy rides. Of course, आशा भोसले और आदित्य नारायण की आवाजों में लेकर आई हूँ एक ऐसा गाना. And I'm pretty much sure it's gonna bring us so much souvenirs. Yes. Taken from the movie Rangila, and it goes out specially to all our dear lovely listeners. शायद आप कहाँ पे हो, गाड़ी में हो, सफर में हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, ये खूबसूरत सा गाना आपके नाम.

कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा गाना? Yes, taken from the movie Rangila, 1995 में रिलीज हुई थी. Such a beautiful track है. मैंने बोला था ना आपके बहुत कुछ यादें हम ताज़ा कर लेंगे उस गाने के साथ. And I'm pretty much sure कि yes, you might be smiling and आपने दिल से enjoy किया. That's the aim actually कि हम आपके दिल को खुश कर लें. 4:35 हो चुके हैं. कहाँ तक पहुँचे मेरी जान? आराम से गाड़ी चलाना, मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग, सीट बेल्ट लगा के रखना, मोबाइल फोन को साइड में रखो एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक. गिनी है ना साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू ऑल दोस हु आर स्टिल एट वर्क. जी हाँ, स्टिल एट वर्क वर्किंग राइट नाउ जस्ट बिल्कुल हमारी तरह. तो ये गाना आपके नाम, जस्ट टू विश यू बोंकोहाश.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OM2
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: स्पोर्ट्स न्यूज,
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
5: बिल्कुल जी, जस्ट लाइक हमेशा हम कहते हैं, वी हैव अवर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स एंड स्पोर्ट्स गुरु अरविंद जी, जो आ जाते हैं एवरी आफ्टरनून टू गिव यू लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो ये रहा आपके लिए गुड आफ्टरनून जी। तो चलिए जी, गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद जी।
6: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून OM2 लिसनर्स। लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। UEFA नेशंस लीग के लीग ए ग्रुप 1 में फ्रांस और इटली की जीत। जिनेदीन जिदान के लिए ब्लू बेल्जियम के खिलाफ 1-0 से हार रहे थे, पर मैन इन फॉर्म मिकाइल ओलिजे का डबल देजिरे डुए और रियान चर्क की पासा पलट पाए। इस जीत से फ्रांस अपने ग्रुप में इटली से 3 अंक आगे है। इटली का स्क्वाड्रा अजूरा 3-1 से तुर्की को हरा पाए। ज्ञान लुका स्कमाका ने इटली का पहला गोल स्कोर किया। फिर सेकेंड हाफ में अराल सिमसीर ने बराबरी की। तुरंत रिकॉर्डो कालाफियोरी का गोल और तीसरा गोल बनाया पियो एस्पोजिटो ने। ग्रुप B2 में नॉर्दर्न आयरलैंड 0, जॉर्जिया 0, यूक्रेन 1, हंगेरी 2। ग्रुप B4 में बोस्निया 1, पोलैंड 0, रोमेनिया 0, स्वीडन 1, स्वीडन के लिए योकुरेस का गोल। फिर ग्रुप C2 में साइप्रस 2, लाटविया 1, मोंटेनेग्रो 0, आर्मेनिया 0। आज के फिक्स्चर्स, लीग ए ग्रुप 3 में क्रोएशिया वर्सेस स्पेन, इंग्लैंड वर्सेस चेक रिपब्लिक। स्पेन के लिए नो

0: to Slovenia, Switzerland versus North Macedonia. League C, Group 1 me Albania versus San Marino, Belarus kasamna Finland si hoga. League C, Group 3 me Kazakhstan, Faroe Islands, Moldova, Slovakia. Or Group 4 me Estonia, Iceland, Luxembourg, Bulgaria. Aaj ke international friendlies me Team India football team khelegi Uruguay ke khilaf, Russia versus Nigeria, Algeria versus Niger, Jordan, Venezuela, China versus Tajikistan aur South Korea ka mukabla Uzbekistan se hoga. France ki team mein kal Liverpool ka defender Jeremy Jacquet nahi tha. Sky Sports ke anusar hamstring strain ka problem hai. International duty par Isak bhi ghayal hua tha. International break kafi nuksandeh raha injury list mein kafi log aage. Bournemouth ka Alex Scott thigh injury, इससे द चेरीज नाराज हैं. फिर मैनचेस्टर सिटी से अर्लिंग अलॉन और निको ओगेली को भी चोट लगी है. लिवरपूल में कोडी गाक्पो भी इंजरी लिस्ट में है. मैनचेस्टर यूनाइटेड का कप्तान ब्रूनो फर्नांडेज और डोगु फुल फिट नहीं है. फिर सन्डरलैंड में डैन बालाड और ब्रायन ब्रॉबी के लिए हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम. आर्सेनल से काई हावर्ट्स मसल स्ट्रेन, क्रिस्टोस ज़ोलिस हैमस्ट्रिंग. एस्टन विला का गोलकीपर सुजुकी रिब की समस्या. प्रीमियर लीग में इन तीन हफ्तों की छुट्टी में काफी क्लबों के लिए इंजुरी की समस्या गंभीर रही. प्रीमियर लीग की वापसी होगी इसी शनिवार, इसी सैटरडे को. सैटरडे मैच अर्ली किक ऑफ आर्सेनल वर्सेस लीड्स. फिर 6 बजे एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी बोर्नमुथ, इप्सविच टाउन फुलहम, सन्डरलैंड ब्राइटन और लेट मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर. संडे फिक्स्चर्स क्रिस्टल पैलेस वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी एवर्टन और द बिग वन लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी ये संडे रात को 7:30 बजे. टेनिस चाइना ओपन में कल मेडवेदेव को डिस्क्वालीफाई किया गया. नोवाक जोकोविच के खिलाफ खेलते हुए गुस्से में आकर उसने एक स्पेक्टेटर को टीम टेनिस बॉल से मारा. इस प्रकार जोकोविच फाइनल में पहुंचा. यहां उसका सामना एलेक्स डेमिनो से होगा. जापान ओपन के फाइनल में है कार्लोस अल्काराज. सेमीफाइनल में उसने अपने हमवतन योम मुंडा को हराया. फाइनल में अल्काराज का सामना इरी लेहेका से होगा. और क्रिकेट में भारतीय दौरे पर आई वेस्ट इंडीज की टीम ODI मैचों के बाद अब T20 सीरीज में भाग लेगी. लखनऊ में आज 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम से ज्यादातर खिलाड़ी है इस T20 मैच के लिए. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. आई कैच यू वेरी सून. टेक केयर. बाय बाय.
1: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

नीरज शरर की आवाज़ में शिरीन फराड की तो निकल परी और उनकी क्या अभी जो हमारे साथ जो दे रहे हैं ऑन आर एम टू रेडियो में से आपकी भी तो निकल परी म्यूजिकल सफर हमारे साथ ऑन आर एम टू रेडियो में से थैंक यू जी साथ देने के लिए इट्स मी गिनेश ऑन द माइक एंड आई रियली होप यू हैविंग अ गुड टाइम हो सकता है आज का दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था यू

0: राजा
1: बिल्कुल जी हमारे प्यारे प्यारे रानीज एंड राजाज जो साथ दे रहे हैं ऑन टू रेडियो मिस्टर थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग ट्यून ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम इट्स ऑलरेडी 5 PM

0: पेट्रोल ते पवाए नी, कोई गल नी, साडी गड्डी ते गुडवेल नाल चलदी है।
1: OMG
2: रेडियो मस्ती
3: पाजिया पांजिया
4: पनीर पनीर
3: नो पाजिया पांजिया
4: पनीर पनीर
3: नो पांजिया
4: पनीर
3: वी साइन पनीर Pangia, Pangia.
4: Panier, Pangier.
5: Découvrez la nouvelle gamme 100% veg de KFC avec le succulent panier pâti dans votre Boxmaster ou burger. Savourez toute la richesse du panier croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur.
4: Panier, Pangier.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 जलवा।

तो चलिए जी स्टूडियो की घड़ी में 5:35 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल शो यानी कि इट्स योर रफ्तार वाइब्स ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती एंड आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग दिस ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन। अक्सा बीच तो नहीं घुमा सकते हो लेकिन बॉलीवुड की गलियों में लेके जा रहे हो इन खूबसूरत गानों के जरिए। एंड ऑल दोस जो अभी भी ड्राइव कर रहे हो सकते हैं कि ट्रैफिक में फंसे हुए हो, जस्ट मेंटेन योर पेशेंस, कीप योर पेशेंस एंड मेंटेन डिस्टेंस

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: RM2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: वेलचेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 5:44 हो चुके हैं एंड जस्ट लाइक एवरी आफ्टरनून हम आ जाते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फैशन टिप्स को लेकर एंड लेडीज यस जो मेकअप करना बहुत ही पसंद करते हैं जस्ट टू रिमाइंड यू दैट मेकअप में लिपस्टिक भी आती है और लिपस्टिक का जो फैशन टिप्स हैं हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आज सो डी टाइम लुक के लिए न्यूड पीच या सॉफ्ट पिंक शेड्स ट्राई करें और इवनिंग में बोल्ड रेड बेरी या वाइन शेड्स से ग्लैम लुक पाएं। जी हाँ, टिप है लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा लिप बाल्म जो है ज़रूर यूज़ करें फॉर स्मूथ एंड ब्यूटीफुल लिप्स जस्ट टू प्रोटेक्ट देम।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
3: RM2 Radio Mustang.

तो चलिए जी, थोड़ी देर में बजेंगे 6 बजे। अंदर 6 बजे की समाचारों के बाद हम जरूर मिलेंगे विद सम गुड म्यूजिक ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक।

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. चेक योर टाइम, इट्स 6 पीएम.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.

मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 की सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फिजी में लग रहे प्रिकॉप सम्मेलन के अंतर्गत लगे प्लीनरी सत्र में आज सुबह गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने छोटे विकासशील टापू देशों से एकजुट होने का आह्वान किया ताकि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के वास्ते क्लाइमेट फाइनेंस प्राप्त कर सके और ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान कम किए जा सके। परिवारों खासकर नौजवानों को मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े खतरों को लेकर सचेत कराने के मकसद से गैसीडांस वाली जी में कल रात एक कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री ने ज्यादा परिवारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान दूसरे इलाकों तक भी बढ़ाए जाने का ऐलान किया। सन 2024 में मॉरिशस में महिलाओं में कैंसर के 1,891 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 37.5% ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के मामले थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रस्त मरीजों के लिए

0: इलाज के साथ साथ उनके और उनके परिवारों के लिए मानसिक समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैर सरकारी संगठन लिंक टू लाइफ अर्ली स्क्रीनिंग पर खास बल दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों छात्र प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। वे शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2000 से ज्यादा स्कूलों के सामने घेराबंदी की। पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। अगले महीने लगने वाले COP31 सम्मेलन के सिलसिले में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस संदर्भ में मॉरिशस और प्रशांत महासागर के टापू देश बढ़ते समुद्री जलस्तर के खतरे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिजी में लग रहे प्रीकॉप सम्मेलन के अंतर्गत लगे प्लेनरी सत्र में आज सुबह गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मगोकुल ने छोटे विकासशील देशों टापू देशों से एकजुट होने का आह्वान किया ताकि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के वास्ते क्लाइमेट फाइनेंस प्राप्त कर सके और ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान कम किए जा सके। काविन तापिसा की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
1: गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा कि मॉरिशस जैसे छोटे टापू विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुसार खुद को ढालना आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और पर्यावरण के अस्तित्व का सवाल है। इन परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति के अनुसार जलवायु फाइनेंस तक पहुंच को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मॉरिशस के लिए हमारी प्राथमिकता मिटिगेशन, अडैप्टेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट फाइनेंस और परिवर्तन पर केंद्रित रहेगा। छोटे टापू देशों के लिए अनुकूल वित्तीय सहायता छोटी परियोजनाओं को लेकर तैयार की जाएगी, न कि कॉन्टिनेंटल मंडियों के लिए। धर्मगोकुल ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत की ओर से जलवायु संबंधी देशों की जिम्मेदारियों पर जारी सलाहकारी राय का सम्मान किए जाने की अपील की। इस राय में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की सिफारिश की गई है। मॉरिशस के पास अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के सामने जाने का अनुभव है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून बहाल हो। अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं और सभी देशों को ऐसा करने की मांग करते हैं।
2: And we ask every state to do the same.
1: इससे पहले टुलावा में आयोजित सोटालागा, जो संवाद और अनुभव साझा करने के लिए एक पारंपरिक मंच है, अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने COP31 से पहले वैश्विक सामूहिक और तत्काल कार्रवाई की अपील की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बड़े देशों की सामूहिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
0: परिवारों, खासकर नौजवानों को मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े खतरों को लेकर सचेत कराने के मकसद से रेजिडेंस वालीची में कल रात एक कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री यहिया नवामागी मौके पर उपस्थित हुई। इस संघर्ष के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन अनुला इलाके के सामुदायिक केंद्र में अगले 10 हफ्तों तक सप्ताह में 2 प्रिवेंशन सत्र का आयोजन करेगा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादा परिवारों के बीच जागरूकता बढ़ाने और ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष में समुदायों को एकजुट करने के लिए ये अभियान दूसरे इलाकों तक भी बढ़ाया जाएगा। कोयल सितल, गीता सोनाई।
1: हर हाथ में एक मशाल, नशे के खिलाफ उठती आवाजें। सोमवार शाम रेजिडेंस वालेजी की सड़कों पर लोगों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मार्च किया। इसका उद्देश्य इलाके को रोशन करना और ये संदेश देना था कि नशे का विरोध करें और इस समस्या के खिलाफ चुप्पी तोड़ें। इस अभियान में परिवारों, युवाओं और बच्चों के साथ साथ नशे की लत से प्रभावित लोग भी शामिल हुए। मैं भी पहले सिंथेटिक ड्रग्स लेता था, लेकिन अब 13, 14, 15 साल के नौजवान इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ अपना समर्थन देने आया हूँ, उन्हें जागरूक करने के लिए। समर्थन जरूरी है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, इसके प्रभाव में वे जल्दी आ जाते
3: हैं।
1: ये पहल रेजिडेंस वालेजी कम्युनिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन ने शुगर इंडस्ट्री लेबर वेलफेयर फंड के सहयोग से शुरू की है। इसका उद्देश्य अवैध नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाना है। अगले 10 हफ्तों तक अनुला

0: एनजीओ परिवारों और स्थानीय लोगों के लिए नशे से बचाव को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित करेगा। संगठन के अध्यक्ष जोसे आचुन कहते हैं, 12 चरणों का एक प्रोग्राम है, 6 हफ्तों में इस पर काम करेंगे। बचाव, इलाज, पुनर्वास और समाज में फिर से शामिल करना इसके अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है कि अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। ये अभियान आसपास के अन्य इलाकों तक भी चलाया जाएगा। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्यन नाबामागे ने इस लड़ाई में परिवार के मार्गदर्शन और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। वे कहती हैं, ड्रग की समस्या हर जगह है। अगले सप्ताह से एक विशेषज्ञ
1: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। गोशबा में जल्द ही मूल ढांचा संबंधी एक वृहद विकास परियोजना साकार होगी। इसकी प्रस्तुति आज भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने की। इसके लिए 100 मिलियन रुपए निवेश किए जा रहे हैं। मकसद है इलाके के निवासियों के लिए आवासीय सुविधाएं स्थापित करना। मंत्री शकील मोहम्मद ने बंदरगाह क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों से इस पहल में आर्थिक योगदान देने की भी मांग की।
0: कोतोगाफे में कुछ परिवार वर्षों से बिना पानी और बिजली के रह रहे हैं। करीब 40 परिवारों के पास अपनी जमीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, लेकिन इन जमीनों पर अभी तक पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंच पाए हैं। 10 साल हो गए हैं जब से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पानी और बिजली पाने की कोशिश की, पानी के लिए रोजिल गई, पैसे भी चुकाए। जब वे यहाँ आए तब हमें बताया गया कि जब परियोजना होगी तब पानी मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता। जमीन तक पहुंच भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सड़क, पानी और बिजली के कनेक्शन, बुनियादी ढांचा, कई समस्याओं का अब भी समाधान किया जाना बाकी है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद CWA और CEB के प्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 20 परिवार अभी भी अपनी स्थिति नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। मंत्री शकील मोहम्मद कहते हैं, वित्त मंत्रालय से आर्थिक मदद मांग सकते हैं ताकि सड़क बनाई जा सके, नालियां बनाई जा सके जिससे भारी बारिश के दौरान घरों में पानी न भरे और उन्हें पानी और बिजली की सप्लाई भी मिले। अन्य लोगों को भी नियमित करने पर काम करेंगे कानून के अनुसार मंत्रालय के अफसरों के सहयोग से।
2: Le soutien de ban officier du ministère et en même temps d'une zone d'eau et d'une zone d'électricité.
0: हालांकि सभी मामले एक जैसे नहीं हैं। समुद्र के किनारे कुछ लोग बिना अनुमति के जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं। मंत्री शकील मोहम्मद कहते हैं, पब्लिक बीच पर कई अवैध निर्माण हैं जो सार्वजनिक समुद्र तट पर हैं। बीच अथॉरिटी ने नोटिस दे दिया है, मेरा मंत्रालय भी नोटिस देगा ताकि उन्हें यहाँ से हटाया जा सके, पर इन्हें अन्य जगहों में बसाया जाएगा।
2: Qui l'eau public beach qui proclamait public beach. Alors mon objectif, c'est demander à Beach Authority et na fin fini servi notice, mon ministère aussi pour servi notice pour qu'ils nous cadrent ces autres. Mais en même temps, nous pousser les autres par là, c'est une place. Moi pas pour faire difficulté l'eau là, mais moi pour intransigeant.
0: पुराने मामलों को नियमित करने से लेकर अवैध कब्जों तक अब अधिकारियों को इन सभी मामलों की जांच करनी होगी।
1: जिसे आप अभी सुन रहे थे कि कोतोगाफे में सदस्यों परिवार अभी भी स्वच्छ पानी और निचली और बिजली आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कईयों के पास अपनी ज़मीन के लिए सालों से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA CEB के प्रतिनिधियों के साथ कल स्थल का दौरा किया। मकसद रहा स्थिति का जायजा लेना जो कुछ निवासियों के लिए लगभग 15 सालों से खींचती चली आ रही है। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग जो जनवरी 2027 से अपनी स्टेट एज पेंशन लेना चाहते हैं, वे कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों को अपनी स्टेट

0: एज पेंशन प्राप्त करने के लिए चुनी गई तारीख से 3 महीने पहले तक आवेदन करने की सुविधा है। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने आज दोपहर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का डेमो भी किया। लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए या ऑनलाइन पोर्टल musap.gov.mu.org पर अपने विवरण दर्ज कर सकते हैं। जूनियर मंत्री कुगान परापेन को सुनते हैं।
1: Donc le SAP il rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2027. Et le SAP il est appelé à remplacer le Basic Retirement Pension, le BRP. Et ça veut dire dans du 31 décembre 2026 au 1er janvier 2027, nous assister à la disparition du BRP et à la naissance du SAP. Mais mon avis, c'est pas un bénéficiaire du SAP en des catégories bien distinctes. D'abord, une première catégorie, c'est un dimoun qui déjà peut recevoir une pension BRP. Aujourd'hui, nous avons à peu près un peu plus que 260 000 personnes âgées, ben signaux, qui bénéficiaient du BRP. Et pour ça, ben dimoun là, comme le ministre disait précédemment, je suis capable de dormir tranquille. Je paye aucune application pour faire. Je paye n'a pas en ligne, je paye n'a pas online. Je peux transitionner automatiquement du BRP au SAP. Donc, zéro application pour un bénéficiaire actuel du BRP. Je n'ai pas besoin de soumettre aucune application. Quand le SAP rentre en vigueur, c'est juste un changement d'appellation. Au lieu de que je peux recevoir BRP, je peux recevoir SAP au même montant que le BRP. Avec un ajustement qui pourrait n'importe quoi à coût de la vie, etc.
0: इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में राष्ट्रीय पहचान पत्र, पता, पासपोर्ट या जहां लागू हो नागरिकता प्रमाण पत्र शामिल हैं। एक बार फिर सुनते हैं जूनियर मंत्री कुगान पहापेन को।
1: L'application en ligne, le online application pour le SAP, li concerne uniquement ben nouveaux bénéficiaires du SAP. C'est-à-dire un dimoun qui, au 1er janvier 2027, participe à recevoir BRP et qui a été un nouveau bénéficiaire et c'est autres qui besoin à faire application pour ce SAP. Si nous mettons en chiffre ou en date, n'importe qui s'en a qui naît avant le 31 décembre 1965, lui déjà bénéficiaire du BRP ou lui pour bénéficiaire du BRP jusqu'au 31 décembre 2026. Donc lui pas d'application qui lui besoin faire. L'application lui concerne principalement et uniquement Bandimoun qui est né à partir du 1er janvier 1966. C'est-à-dire Bandimoun qui gagne 60 ans à partir de janvier 2026. Et si on veut simplifier les choses, pour faire l'application, pour capable soumettre aux applications, pareil que manifeste tout le temps la pratique dans la sécurité sociale pour le BRP, ou pour capable soumettre aux applications à partir de 3 mois avant qu'il décide pour touche ou SAP.
0: जिन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई होगी उन्हें आने वाले दिनों में देश भर के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा मंत्रालयों में सहायता दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय को जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन लागू होने के साथ करीब 18,000 ऑनलाइन आवेदनों की उम्मीद है। सन 2024 में मॉरिशस में महिलाओं में कैंसर के 1891 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 37.5% ब्रेस्ट कैंसर के मामले थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रस्त मरीजों के लिए इलाज के साथ साथ उनके और उनके परिवारों के लिए मानसिक समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैर सरकारी संगठन लिंक टू लाइफ ये जरूरी सहायता प्रदान करता है और इस

0: अक्टूबर के दौरान ये संगठन शुरुआती जांच यानी अर्ली स्क्रीनिंग पर खास बल दे रहा है। सिंचा मुतु करुणा लालू
1: उनचास साल की उम्र में मालिनी को अपने स्तन कैंसर का पता चला। निराश होने के बजाय उसने अपनी हिम्मत दिखाई। एक पारिवारिक समस्या है, माँ और दो बहनों को भी ये बीमारी हुई, मेरे लिए नई बात नहीं। हर साल अपना मुआयना कराती हूँ, बहुत पहले ही इसका पता लगा लिया था, इसलिए उपचार मुश्किल नहीं। 4 साल से इलाज पाने वाली पास्कल लिंक टू लाइफ द्वारा आयोजित गतिविधियों में हमेशा भाग लेती हैं।
2: Le yoga, la nutrition très important parce que nous faisons manger maintenant très important.
1: उन्होंने कहा बहुत दर्द होता है, tai chi योगा अभ्यास करने से मदद मिलती है, पोषण भी बहुत जरूरी है, सोफोलॉजी भी करते हैं ताकि शांति मिल सके। हम सभी एक दूसरे को समझते हैं, आज ठीक हैं, कल उठ नहीं सकते क्योंकि थकावट होती है।
2: Aujourd'hui on est peut-être bien, demain on peut pas se réveiller. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué.
3: On va venir demander à notre corps d'enlever toutes les tensions.
1: मंगलवार को सोफोलॉजी का सत्र था, यानी विश्राम की एक तकनीक।
4: On fait des exercices de sophrologie.
1: जया भीमक ने कहा सोफ्रोलॉजी विजुअलाइजेशन भी करते हैं विभिन्न थीमों पर ताकि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें, अपना तनाव दूर कर सकें। उन्हें ऐसे उपकरण देना चाहते हैं ताकि वे घर पर इसका उपयोग कर सकें। पिंक अक्टूबर के इस महीने में लिंक टू लाइफ कई गतिविधियां आयोजित करता है। रिमेना मागी ने कहा उतार चढ़ाव होता है, अपने को आईने में देखकर संकल्प लेते हैं, खुद का ठीक से ख्याल रखेंगे, अपनों को स्तन कैंसर के मुआयने के लिए प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि कैंसर के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं। ऐसे वचन किए गए ताकि इस कठिन घड़ी के बावजूद ये ज्यादा मुस्कुराती हुई एवं साहसी हो सके।
0: मॉरिशस पानी की कमी का सामना कर रहा है। ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार दिसंबर के दूसरे हिस्से में गर्मियों की बारिश पड़ने की उम्मीद है। मोवाक्वा जलाशय में अभी जलस्तर मात्र 35.9% है, जहां से रोजाना सिर्फ 61,000 क्यूबिक मीटर पानी निकाला जा रहा है, जबकि आमतौर पर 110,000 क्यूबिक मीटर पानी निकाला जाता है। स्थिति से जलापूर्ति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादन ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई उपाय लागू करने की घोषणा की, जिनमें भूमिगत स्रोतों का इस्तेमाल और नए मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना शामिल है। मॉरिशस में कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल और स्वास्थ्य पर उनके संभावित असर, खासकर कैंसर के मामलों की जांच के लिए एक महामारी संबंधी अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO की विशेषज्ञता प्राप्त होगी। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में कल एबेन में अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक लगी। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल सलाम गुये और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल रहे। डॉक्टर अरविंद बुलेल ने सटीक और प्रासंगिक बायोग्यानिक डेटा पर निर्भर रहने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा कीटनाशकों के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे।
5: अगर विदेशों में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों में पर्यावरण में मौजूद कृषि कीटनाशकों के संपर्क और कैंसर के खतरे के बीच संबंध सामने आया है, तो मॉरिशस में इस संबंध में अभी तक कोई वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO की मदद से एक महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाएगा। कृषि उद्योग मंत्री के अनुसार करीब 9 से 10% कृषि उत्पादों में कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से ज्यादा पाए जाते हैं। मंत्री अरविंद बुलेल कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि और FAO से मांग की है कि एक साथ काम करें, उनका समर्थन लें स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से, ताकि महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जा सके। कीटनाशकों के प्रयोग को लेकर कानून पर भी ध्यान दे रहे हैं। कानून पर काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया है कि कानून में कौन से सुधार लाने चाहिए।

0: qui ban amendement examiné dans la loi et qui ban réguler choses.
1: फल और सब्जियों के आयातक भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। मंत्री अरविंद बुलेल कहते हैं, सिर्फ स्थानीय खेतीहरों के बारे में बात नहीं कर रहे, फल और सब्जियां आयात करने वाले लोग भी हैं। सभी टेस्ट किए जाएंगे, न सिर्फ मॉरिशस की प्रयोगशालाओं में बल्कि विदेशों में भी। किसानों और उनके परिवारों की नियमित स्वास्थ्य जांच की भी योजना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू कहते हैं, कायम की गई कमेटी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे जो उन परिवारों को देखने जाएंगे जो कृषि से जुड़े हुए हैं। तब इसका पता चल जाएगा कि सच में कीटनाशक कैंसर के बढ़ने का कारण है। समिति की ओर से किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
2: बीते शनिवार गोविंद नयन पूजा का तीसरा शनिवार रहा। जी हाँ, बीता शनिवार गोविंद नयन पूजा का तीसरा शनिवार रहा। भक्तों ने देश के कोविलों में भगवान कृष्ण को समर्पित विशेष पूजा में भाग लिया। हमारी एक टीम गानम वक्वा के अन्नादुराई तामिजे कोविल में मौजूद हुई। प्रार्थनाओं के साथ साथ भजन और नृत्य हुए। प्रियंका अरी, गीता नारायण।
1: रात के दौरान प्रार्थनाओं और पारंपरिक भजनों की गूंज सुनाई देती है। कई दिनों की तैयारियों के बाद ग्रानम रोड वाकवा स्थित अनादुराई तमीज कुविल श्रद्धालुओं के लिए अपने द्वार खुलता है। यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित प्रार्थना में श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुँचे। तिरुतुंडर आया बतलैन गोविंदा स्वामी कहते हैं, पुरातासी को एक कठिन महीना माना जाता है। सभी भक्त महाविष्णु की पूजा करते हैं हम सबकी रक्षा के लिए। इन धार्मिक आयोजनों के केंद्र में है कंबम। ये पवित्र दीपक भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इस पवित्र रोशनी के चारों ओर श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और कुम्मी नृत्य करते हैं। गोल घेरा बनाकर श्रद्धालु भक्ति गीतों की लय पर एक के बाद एक कदम बढ़ाते हैं। इस भक्ति भरी रात में प्रसाद और भेंट का भी विशेष महत्व है। इनमें वड़े भी शामिल हैं, जो अनाज से बने एक पारंपरिक पकवान है और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। सेंसुबेन कहते हैं, भक्तों के लिए रात के दौरान तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलता है। गोविंदन की रात्रि बहुत ही श्रद्धा भक्ति से गुजारते हैं। तांगावेल गोविंदन कहते हैं, गोविंदन एक त्याग है, व्रत रखते हैं। कुम्मी गुलाटम के साथ जब सभी लोग एकत्र होते हैं तब उसकी सुंदरता देखते बनती है। बड़ी गमसामी कहती हैं, गांव के सभी लोगों को इसका हर साल इंतजार रहता है।
3: Et en plus de ça, il y a Manama qui nous passe la nuit.

0: कुछ श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना का सिलसिला इस कोविल तक ही सीमित नहीं रहता। एक ही रात में 3 और कभी कभी 7 कोविल के दर्शन भी किए जाते हैं। ये आस्था की एक यात्रा है जहां हर प्रार्थना, हर भजन और हर कदम श्रद्धालुओं को ईश्वर के और करीब ले जाता है।
1: और वेंकटेश्वरा पूजा व्रत के संदर्भ में एक आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम के लिए युवा कर्नाटिक कलाकार राहुल वेलल मॉरिशस आए हुए हैं। मॉरिशस तेलुगु महासभा के मुख्यालय में उनका स्वागत किया गया। मात्र 19 साल की उम्र के इस भारतीय कलाकार ने भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियों से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों का दिल जीता है। आज कल 7 अक्टूबर को फिनिक्स के वाल्डेवी इवेंट गार्डन में उनका लाइव परफॉर्मेंस होगा। शतेंद्र की रिपोर्ट।
2: सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में राहुल वेलल भारत में कर्नाटक संगीत के युवा चेहरों में अपनी पहचान बना चुके हैं। मॉरिशस में अपने पहले दौरे पर एक आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में उनका स्वागत मॉरिशस तेलुगु महासभा के मुख्यालय में दो अन्य कलाकारों के साथ किया गया।
3: My first time and thoroughly enjoyed it till now. The weather has been great, very similar to what we have.

0: बैंगलोर।
1: उनका संगीत सफर उन्हें पहले ही कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जा चुका है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और हांगकांग शामिल हैं। इसके साथ ही वे कर्नाटक संगीत के प्रतिष्ठित गुरुओं से अपनी संगीत शिक्षा जारी रखे हुए हैं।
0: कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर एंड्स, एंड द एंड गोल इज दैट वी ट्राई टू बिकम एज क्लोज टू द ओशन ऑफ म्यूजिक एज पॉसिबल।
1: सिर्फ संगीत प्रस्तुति तक सीमित न रहते हुए ये युवा गायक अपनी कला साधना को आध्यात्मिकता से गहराई से जोड़ते हैं।

0: उनके लिए गायन भक्ति व्यक्त करने और श्रोताओं के साथ एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव बनाने का माध्यम है।
1: It's more about the vibe that you feel once you're there, the spiritual vibe and the divine energy that you get to experience in such concerts. So I think it's a must for everyone to attend and I'm sure they'll enjoy it as well.
0: उनकी ये सोच मॉरिशस के दर्शकों के बीच भी विशेष रूप से जुड़ाव पैदा कर सकती हैं। ये तीसरा आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम है जिसका आयोजन वेंकटेश्वर व्रतम के अवसर पर किया जा रहा है।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों छात्र प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। वे शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2000 से ज्यादा स्कूलों के सामने घेराबंदी की। पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुई हैं। और उधर साइबेरिया में एक प्लेग अनुसंधान केंद्र में एक लैबोरेटरी कर्मचारी की मौत के बाद उसके संपर्क में आए करीब 200 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। रूसी अधिकारियों ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। अमेरिका की तरफ से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बढ़ते हम अब मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है रात के दौरान और कल सुबह बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिनी इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 6:09 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:46 पर।

तो इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसोल पर हमारे सहयोगी डोमिनिक का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर।

Shoksa cha sunye. Ali Brian Vakwame, Ali Brian Vakwame, 64 saal ki, 64 years old ki, Shrimati Vilasavadi Lachini, Shrimati Vilasavadi Lachini, Pedasham Goinden, aur jinhe baby ke naam se log zyada jante the, aur jo Ventura Dukan ki मालकिन थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके घर अली ब्रियन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। मामजेल जान गुडलैंड्स में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री कासीराज अलकोरी जिन्हें ओमदेव के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शोभा अलकोरी के घर मामजेल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहूज गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एवेन्यू

Le palmier, Confoucro Flaquemé. Avenue Le Palmier, Confoucro Flaquemé. Avenue Le Palmier, chemin Kijé. Avenue Le Palmier, Kangaro Flaquemé. Avenue Le Palmier, Kangaro Flaquemé. Exopanch Sal. Qui? 105 years old. Qui? Shimati Kankama Chinya. Shimati Kankama Chinya. पैदाशना बंगारी और जिन्हें बाबाम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रामदास और देवानंद चिनिया के घर कोंगारो फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। रायरोड कैंसकोंतों वाकवा में, रायरोड कैंसकोंतों वाकवा में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइंसामी सुंदरम जिन्हें राजेन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो सदाल कॉलेज में अटेंडेंट का काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विमला सुंदरम के घर कैंसकोंतों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 3 PM। रायरोड 9वीं मील त्रियोली में, रायरोड 9वीं मील त्रियोली में 21 साल की 21 ईयर्स ओल्ड की बीबी फातिमा शबनीज सुकुमिया जिन्हें शबनीज के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान 9वीं मील त्रियोली से उठाकर दफनाने के लिए प्रेंदी पपाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। शिवाला लेन पुचिपा के मोताई ब्लॉश में, शिवाला लेन पुचिपा के मोताई ब्लॉश में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रूपावती झगर सिंह पैदाशनाम नक्चेदी और जिन्हें राधा मरम फाक्तिया के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके बेटे विकास झगर सिंह के घर पुचिपा के मोताई ब्लॉक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। नंबर 10 नाहाबू सलीम स्ट्रीट बुबासे में 82 साल की

0: ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। नंबर 10 नाहाबुसलीम स्ट्रीट बुबासे में, नंबर 10 नाहाबुसलीम स्ट्रीट बुबासे में 82 साल की, 82 years old की कुरेसा इमाम अली जिन्हें मैडम आबू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात 7:30 बजे इनके मकान बुबासे से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए नूरे कबावी मस्जिद दे जाएगी डॉक्टर रीड बुबासे स्ट्रीट में, फिर दफनाने के लिए बैदिदाम कासी का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुनाइट एट 7:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: सच ए ब्यूटीफुल मीनिंगफुल गाना और हमारे लिए तो एकदम हद से ज़्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि ये गाना आपके लिए एकदम फिट होता है जहाँ पर हम आप लोगों के लिए अपने दिल के एहसास को इस गाने के ज़रिए एक्सप्रेस कर पाते हैं। और आप जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं तब से तो ज़िंदगी में चार चांद लग गया है और शो में भी। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। इतने प्यार से 7:06 हो चुके हैं। विशिंग यू ऑल अ लवली लवली गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एंड एज यूजुअल बात करते करते हमारी एक जो निगाह है वो टिकी हुई है आपके मैसेजेस पर। और बात करते करते हम यही देखते रहते हैं कि कितने सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं और शो के शुरू होने से पहले ही आपके मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए दिल से आपको शुक्रिया। एंड एज यूजुअल इस म्यूजिकल कारवा को बहुत ही प्यार से आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लव एंड इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग। एंड यहाँ पर हम आए हैं दिल का हाल सुनने और सुनाने के लिए ही। तो ज़रूर हमें बताइएगा कि आपका दिन कैसा रहा एंड किस तरीके से आपने अपने इस दिन को स्पेंड किया और हाउ यू आर स्पेंडिंग योर ट्यूसडे इवनिंग फॉर द मोमेंट। एंड टू ऑल दोज जो अभी डिनर ले रहे हैं आपको विश करेंगे बन अपेची शुभाहार। हमारा साथ देते रहिए, दिव्या का साथ है रात के 9 तक इन योर इवनिंग लाउंज। और प्यार की बातों के साथ साथ प्यार भरे गाने भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त काम कर रही है, मे बी आपको वो आज। एंड अगर आप अभी वापस जा रही है तो बस हैव अ सेफ एंड अ म्यूजिकल राइड विद रेडियो मस्ती।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वेल 7:19 हो चुकी है, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है और हमारे लिए आपकी खुशी बस आपकी है और हमारी खुशी आपकी भी है। और ऐसे ही प्यार में ये जो दिल की अदला बदली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं ना कि दिल में सौदेबाजी तो होती रहती है, जहाँ पर आप एक हाथ से दिल देते हैं तो दूसरे हाथ से दिल लेते भी हैं। और इस प्यार को रेसिप्रोकेट करना ये आपका फ़र्ज़ है और इस पर रोज़ रोज़ काम करना ये भी आपका पूरा पूरा ड्यूटी बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके प्यार में जो स्पार्क है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने प्यार के स्पार्क को कभी ख़त्म होने ना दे और इसको फेड कभी होने ना दे। ज़िंदगी में दो चीज़ आपको कभी फेड नहीं होने देना चाहिए। एक है आपका प्यार, आपके प्यार में जो तड़का है, जो स्पाइस है, जो स्पार्क है वो, और दूसरी है आपका जो इनर चाइल्ड है, इसको कभी कभी फेड आउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए ज़िंदगी आप अच्छी तरीके से जिए एंड हम चाहते हैं कि हंसते मुस्कुराते हमारे हर एक गीत को आप ऐसे ही एंजॉय करते रहें। एंड डेफिनेटली डू लेट अस नो कि इन प्यार भरे गानों को सुनने के बाद आप किसको याद कर रहे हैं। बस हमें ही नहीं, उनको भी बताइएगा कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है और कितना मायने रखता है। और चलिए यहाँ पर हमारी प्यारी सी राधा जी ऑल द वे फ्रॉम कनाडा कनेक्टेड हैं हमारे साथ। होप यू आर डूइंग गुड, आई एम वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच राधा जी, लवली शो एज यूजुअल, दिल से शुक्रिया। एंड आप कहते हैं कि प्ले अ ब्यूटीफुल 90s वाला गाना फॉर ऑल माई फैमिली इन कनाडा मॉरिशस एंड फॉर ऑल द RM2 लिसनर्स, थैंक यू सो मच, आपको भी हर हर महादेव। एंड चलिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा 90s गाना बहुत ही प्यार से हम चूज़ करके लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एंड टू ऑल दोज जो 90s एरा को हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप इस गाने को बस सुनेंगे नहीं बल्कि दिल से महसूस करेंगे।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

ऑलरेडी 7:42 गाने सुनाते सुनाते ये वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता. मे बी इसको कहते हैं द मैजिकल इफेक्ट ऑफ म्यूजिक. चलिए यहाँ पर कुछ और आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे. हेलो दिव्या जी, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सिलेक्शन. एंड धीरे धीरे यू

0: Now for beautiful couple Bindi and Sona Kalu of Miljan Goodlands Sathi Tere Pyar Pooja Hai Tere Siva Kaun Mera Dooja Hai Yaar Kya Baat Hai Ye Gana Hai Ya Phir Aapne Apne Beautiful Husband Ya Wife Ke Liye Dedicate Kiya Hai Koi Baat Nahi Lekin Ye Par Ki Bahut Hi Achha Laga Thank You So Much Aise Hi Aapka Pyar Strong Rahe Aur Aise Hi Aap Ek Dusre Ke Sukh Dukh Ka Sathi Banke Rahe Hi Good Evening Very Nice Songs Thank You So Much You Want To Dedicate The Next Gana For My Hubby Viju From Wife एशा एशा जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच एंड द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट स्पेशली टू ऑल दोज जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: It's a beautiful one of my favorites and it's taken from the movie Aja Prem Ki Hazab Kahani Javed Ali Ki Awaaz Mein Aajao Meri Tamanna and jo bhi aapki dil ki khwahishein hain jo bhi aapki tamannaein hain aap zarur isko express kijiye hamesha hum kehte hain na ki pyar ko jataya jata hai pyar ko chhupaya nahi jata hai to chaliye pyar ka izhar ikrar karte rahiye and keep falling in love with our beautiful Ganesh 7:55 इस गाने के बाद हम जरूर कदम रखने वाले हैं द सेकंड आवर ऑफ इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 p.m.

That was such a beautiful romantic gana Vinod Rathod और अलका याग्निक की आवाजों में. और जब भी विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज साथ में गूंजते हैं तो ऐसा लगता है कि मैजिक ही हो गया है. चलिए प्यार के इस मैजिक को आप जरूर महसूस कीजिएगा. और कहते हैं ना कि जिंदगी में द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट. तो उनमें से सबसे ऊपर है प्यार. और प्यार जितना भी आप इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे आपको अल्फाज ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, ये इतना खूबसूरत एहसास है कि हमेशा

0: जब आप इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसको बस महसूस किया जाता है वो भी दिल से. चलिए आपकी नीयत ठीक है और आपका दिल सच्चा है तो लव विल फाइंड इट्स वे टू यू. एंड कहते हैं ना कि जहाँ पर सीम्स टू बी नो वे प्यार मेक अप हिज ओन वे. तो बस आप यही सोच कर आगे चलिए कि लव विल डेफिनेटली रीच यू अगर आपका मन और आपकी नीयत सच्ची है. तो चलिए 8:08 हो चुके हैं. इट्स अ वंडरफुल ट्यूसडे इवनिंग 6 अक्टूबर 2026. ये महीना भी धीरे धीरे बस बढ़ ही रहा है एंड अक्टूबर महीना आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहे. एंड जितने भी सारे आपके अपकमिंग एंडीवर्स हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे आप कंप्लीट कर पाए. मे बी कुछ लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन अभी बाकी है. शायद आपने सोचा कि इस महीना आप ज़रूर कुछ करेंगे तो आई जस्ट होप कि आप ज़रूर कर पाएँ एंड हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी स्पेंड करेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचेंगी. और वैसे कहते हैं ना कि जब आप अच्छे अच्छे अच्छा अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ ज़रूर अच्छा होता है. तो चलिए गुड म्यूज़िक के साथ आप जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा. ऑल आई कैन गारंटी यू इज़ गिविंग यू सम ब्यूटिफुल मोमेंट्स टुगेदर जहाँ पर हम और आप हर एक मोमेंट को मेमोरेबल और यादगार बनाएंगे हर एक गीत के जरिए. तो चलिए यहां पर दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM वेटिंग फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

क्या बात है, सच वंडरफुल गाना, आपको देखकर फूलों को पसीना आ गया। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन प्यार में सब लोग ऐसे ऐसी बातें कर लेते हैं जो दिल को छू लेते हैं, और कभी कभी हम चांद तारों को तोड़ने के बारे में भी बात करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन सुन के दिल खुश हो जाता है। लेकिन जस्ट नो एंड रियलाइज कि प्यार में आपको इतनी बड़ी बड़ी वादे नहीं करने हैं। बस लव इज़ ऑल अबाउट शोइंग ऑन लो डेज, ये तो हमेशा हम कहते हैं। प्यार का मतलब यही है कि आप वक्त निकाले अपनों के लिए और उनसे पूछे कि उनका

0: दिन कैसा गया, या फिर एक छोटी सी उनकी फेवरेट फ्लावर, या फिर जो उनको खाने में पसंद है, एक छोटा सा बस ये जो लिटिल जेस्चर्स हैं वो रियली काउंट करते हैं. और कहते हैं ना कि प्यार में छोटी छोटी चीज़ें रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो आप देखेंगे कि अगर आप प्यार में ये छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो ये धीरे धीरे करके आपके जो प्यार करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा, और इससे शायद जो आपसे प्यार करते हैं उनका नज़रिया भी बदल जाएगा आप लोगों के लिए. तो चलिए 8:26 हो चुके हैं, एंड जान आप है काहोलिन से डेडिकेटिंग अ रोमांटिक सॉन्ग टू लव जानू, उनका नाम है मोनू, एंड अभी ड्राइव कर रही हैं वैन, रिक्वेस्टिंग फॉर अ सॉन्ग. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए टू ऑल दोज जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच. हम और आप साथ साथ हैं टिल 9 PM इन योर इवनिंग लाउंज.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: दोस्तों कहने को जश्न बहारा है लेकिन इश्क ये देखकर थोड़ी हैरा भी है। अब आप हैरान हैं ये अच्छी बात है, लेकिन प्यार में कभी परेशान मत होइएगा क्योंकि प्यार में परेशानी नहीं बल्कि प्यार में आपको हमेशा खुशी रहना है और खुशी देनी है। 8:47 ऑलरेडी दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज एंड हमारा और आपका साथ रहेगा रात्रि के 9 बजे तक। कुछ ऐसे ही गाने आप तक हम पहुंचाते रहेंगे एंड चलिए यहाँ पर वंस अगेन वी हैव अ ब्यूटीफुल 90s, एक इतना खूबसूरत गाना कि ये दिल को छू जाएगा।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: 8:53 ऑलरेडी एंड चलिए उतरा ना दिल में कोई उस दिल रुबा के बाद और हमारे दिल में हमेशा आप उतरते रहते हैं दिल में जगह देने के लिए दिल से आपको शुक्रिया एंड चलिए गाने सुनाते सुनाते अभी बस हमारे जाने का टाइम आ चुका है और हम जा रहे हैं एक बार फिर से वापस आने के लिए बहुत ही प्यार से सेम टाइम 7 से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच जहां पर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए इवनिंग लाउंज तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत टेक केयर कीप स्माइलिंग शुभ रात्रि एंड बाय बाय

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है योर लेट नाइट ग्रूव्स। वैसे रात का सुकून और हल्की सी ठंडक और दिल में छुपी हुई कुछ खूबसूरत फीलिंग्स, तो क्यों ना इस रात को थोड़ा सा और रोमांटिक बनाया जाए। बिल्कुल जी, रेडियो मस्ती पर बजेंगे वो बॉलीवुड गाने जो सीधा दिल को टच करें, कुछ यादें जगाएंगे हम और कुछ फीलिंग्स को वर्ड्स देंगे और शायद किसी स्पेशल पर्सन की याद भी दिला देंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस खूबसूरत सी सफर में गिनीशा का हम सफर बनने के लिए।

वेल दोस्तों आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स विद मी आरजे किनिशा, जहां हर मेलोडी में है प्यार, हर लिरिक्स में है एक कहानी और हर गाना है किसी ना किसी के दिल का नाम। बिल्कुल जी, सो अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लाइट्स डिम कर लीजिए और इस खूबसूरत रात को म्यूजिक के साथ फील कीजिए। ये है रेडियो मस्ती पर म्यूजिक जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां, हाँ इसी का नाम।

कैसा लग रहा है आप सभी को ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, रात तो बहुत हो चुकी है और रात का वक्त है और दिल को चाहिए बस थोड़ा सा सुकून, है ना? तो चलिए कुछ ब्यूटीफुल बॉलीवुड मेलोडीज के साथ इस रात को और भी स्पेशल बनाते हैं। आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स विद मेगनिशा ओनली ऑन रेडियो मस्ती। और अगला गाना तमाम सुनने वालों के नाम जो हमारा साथ शिद्दत से निभा रहे हैं।

वैसे दोस्तों कभी कभी कुछ फीलिंग्स को वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। एक ब्यूटीफुल गाना ही काफी होता है दिल की बात कहने के लिए। तो इस रात अपने दिल की सुनिए और एंजॉय कीजिए रोमांटिक बॉलीवुड गानों के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑन लेट नाइट ग्रूव्स। वैसे अगर आज किसी स्पेशल पर्सन की याद आ रही है तो समझ लीजिए कि आज की रात और हमारे गाने बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन फॉर सम ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट्स ओनली ऑन लेट नाइट ग्रूव।

So my dear lovely listeners, रात गहरी होती जा रही है लेकिन मोहब्बत भरे गाने इस रात को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो चलिए जी, रेडियो का वॉल्यूम तो आपने बढ़ा लिया और दिल को म्यूजिक के हवाले अब कर लीजिए। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते हैं मेरे दोस्त, फील किए जाते हैं। और आज की रात हम आपके लिए लाई हैं ऐसे ही कुछ मेलोडीज जो सीधा दिल तक जाएगी। बिल्कुल, दिस इज योर लेट नाइट ग्रूव्स विद मी निशान, रेडियो मस्ती, एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग। ड्राइव केयरफुली एंड एंजॉय दिस वन।

आई रियली होप कि आप दिल से एंजॉय कर रहे हैं हर एक खूबसूरत गाने को जो हम पेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं तो एडवाइस करूंगी, अगर आप घर पे हो लाइट्स डिम कर लीजिए, फोन जो है साइलेंट पे कर लीजिए और म्यूजिक थोड़ा सा लाउड कर लीजिए। बस इतना ही तो चाहिए एक परफेक्ट नाइट के लिए। तो रेडी हो जाइए रोमांटिक बॉलीवुड मेलोडीज के लिए, क्योंकि लेट नाइट ग्रूव्स में अपकमिंग सॉन्ग हो सकता है इट्स वन ऑफ योर फेवरेट। यू नेवर नो, जस्ट एंजॉय इट।

वैसे आज की रात अगर आपके दिल में कोई नाम है तो ये गाना शायद आपकी फीलिंग्स को आपसे बेटर एक्सप्रेस करेंगे। Stay tuned in to your late night grooves, जहां पे रात और रोमांस का कनेक्शन ही कुछ अलग है। और जब साथ हो बॉलीवुड के ब्यूटीफुल गानों

का तो मूड ऑटोमेटिकली ड्रीमी हो जाता है दोस्त. एंजॉय द मैजिक ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड मिसमराइजिंग गाने जो हम पेश करने जा रहे हैं आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती.

जैसे सोचो एक कप कॉफी या एक कप गर्म गर्म चाय, थोड़ी सी खामोशी और बैकग्राउंड में कुछ रोमांटिक बॉलीवुड गाने, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। तो अपनी रात को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए जस्ट स्टे ट्यून हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती, क्योंकि कुछ यादें रात को और गहरी कर देती हैं, कुछ यादें रात को और गहरी हो जाती हैं और कुछ गाने उन यादों को और खूबसूरत बना देते हैं। तो इस रात मेमोरीज के साथ म्यूजिक का सफर जारी रखिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

हो सकता है कि आप अकेले बैठे हो, यस आप अकेले हो, किसी के साथ हो या किसी को सीक्रेटली मिस कर रहे हो. टुनाइट दिस सॉन्ग्स आर फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड विद मी किनिशा एंड लेट द म्यूजिक स्पीक, जो आपका दिल बोल नहीं पाता है. रात का मूड रोमांटिक होता है ना, तो प्लेलिस्ट भी रोमांटिक होनी चाहिए. बॉलीवुड के सोलफुल, ड्रीमी और हार्ट टचिंग गाने के साथ मैं हूँ आपका साथ देने के लिए. सो लेट नाइट ग्रूव्स, हाँ जी, खासकर आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती.

वैसे दोस्तों कभी एक गाना पुरानी याद बन जाती है, जिंदगी में कभी एक गाना पुरानी याद बन जाती है और कभी किसी स्पेशल पर्सन की याद दिलाती है और कभी बस दिल को स्माइल करा देती है। ऐसे ही गानों के साथ हमारा साथ यूं ही देते रहे, शिद्दत से सुनिए और एंजॉय कीजिए और अपने प्यार को याद कीजिए। ये अगला गाना टू ऑल दोस हु आर ट्रूली मैडली डीप इन लव।

तो कहेंगे कि बस थोड़ा सा आप अपने दिल को म्यूजिक के हवाले कर लीजिए, रात को थोड़ा फील करने दीजिए, हेडफोन्स लगाना है तो लगा लीजिए, आंखें बंद करना है तो बंद कर लीजिए और बॉलीवुड मेलोडीज को अपने दिल तक पहुंचने दीजिए। यू आर लिसनिंग टू योर लेट नाइट ग्रूव्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती।

जैसे प्यार की बातें हो या दिल की फीलिंग्स, प्यार की बातें हो या दिल की फीलिंग्स, बॉलीवुड गाने ने हमेशा सब कुछ कहने का एक ब्यूटीफुल तरीका दिया है। मानो या ना मानो, आज की रात हर गाने शायद आपके दिल की बात बयां कर रही है। शायद ऐसा कोई गाना हम प्ले कर रहे हैं जो आपकी पूरी लव स्टोरी बयां कर रही है। बिल्कुल, अगर आपकी रात किसी स्पेशल पर्सन के ख्यालों में गुजर रही है तो नॉट टू वरी, आप बिल्कुल अकेला नहीं हो। मैं हूं नागी निशा, आपका साथ देने के लिए कुछ ब्यूटीफुल रोमांटिक गानों के जरिए आपको आपके दिल की बात पहुंचाने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

वैसे रात का सुकून बॉलीवुड का रोमांस और दिल की कुछ अनसेड फीलिंग्स व्हाट मोर डू वी नीड स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ लेट नाइट ग्रूव्स इज ब्रिंगिंग यू वन ब्यूटीफुल मेलोडी आफ्टर अनदर हां जी बस सिर्फ रेडियो मस्ती पर ऐसा ही सुनने को मिलता है उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं दे आर हैविंग अ गुड टाइम जी हाँ दोस्तों हो सकते हैं कि अगर आप काम पे हो साथ दे रहे हो तो भूलेगा मत कि हम भी तो हैं साथ देने के लिए सो बोन कुराज टू यू एंड एंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक जो हम लेकर आए हैं इन योर लेट नाइट ग्रूव्स

बिल्कुल, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि कुछ गाने बने हैं सुनने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए। कुछ गाने सुनते ही दिल कहता है ये तो मेरी ही स्टोरी है। तो देखते हैं आज की रात कौन सा गाना आपकी स्टोरी बनने वाला है। Keep listening to your late night grooves, जहां रात छूती है, feelings बहुत सारी हैं। तो चलिए उन feelings को Bollywood के beautiful गानों के साथ celebrate करते हैं। क्या ख्याल है आपका? थोड़ा romance, थोड़ा nostalgia और lots of music only on Radio Masti।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

सो माय डियर एंड लवली लिसनर्स, मेरे प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स, अपनी रात को बोरिंग बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ और मेरे पास है आपके मूड के लिए परफेक्ट रोमांटिक बॉलीवुड गाने. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन.

चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनी शायद टू से गुडबाय टू यू। जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाएंगे तभी तो लौट के वापस आएंगे, फिर तभी आपका साथ देने के लिए वेट नाइट। बस मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन RM2 रेडियो मस्ती। शब्बा खैर, शुभ रात्रि टू ऑल माय डियर लवली लिसनर्स एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.